인도特里 광播电台 听众朋友们 请收听 Nusrat Fateh Ali Khan 唱的 印地语歌曲

印度德里广播电台，听众朋友们，现在我们播送阿贝达·巴云唱的一首歌曲。

请收听 Sukhvinder Ho 上课 Mahadevan 唱的一首歌曲。

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन में भगवती चरण वर्मा के विचारों को। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का बालकांड भाग 61।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ, अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

0: अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीयसम्बन्धं, हरितप्रौद्योगिकीं, नवाचाररणनीतिकसहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचारविमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः नार्वेदेशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिस्सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी

0: एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक सन्ध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 लाख 79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।

प्रेसिडेंट रूसिया तर सबूत आकान मंगाडेरी काते ते इतु पाडा तांगाल डुआ ब्लास्ट डन तीगा ब्लास्ट सितंबर इन्हीं आकान मंजरी कुंजुंगान कडुआ पुतिन का इंडिया डालम कुरुन वक्त कुड़ांग डरी सातु ताहुन डिया सबलूमिया मंगुंजुंगी न्यू दिल्ली पाडा बुलान से दिसंबर ताहुन लालू उन्तुक मंगाडेरी काते ते ताहुनान इंडिया रूसिया का डुआ पुलु तीगा

गोमिते डिंगार पंडापात पार्लियामेंट पे हासे नेपाल तला मई तुजुई सचारा बुलात पंगांका तान हाकिम माकमा आगुंग डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा सवागे कतुआ माकमा आगुंग यंगबारू मयूसूल डिग्लार या सेसी डिंगार पंडापात पार्लियामेंट कमार इन सचारा ट्रेडिशनल लंबागा पर आदिलान नेपाल सनातियासा मंगीकुती कॉन्वेंसी पंग आंकातान हाकिम पालिंग सीनियर सभागे कतुआ महकमा आगुंग सबुआ प्राकृतिक यंगडी आंगा सांगत पंथिंग डमी मंजागा स्टेबिलिटास इंस्टीट्यूशनल डी सूर्या सौरांग प्राजुरित मंजरी तेवास डांस कितार सलूसिन ओरांग मंगलामी लुकालुका सतला सबुआ बॉम मलराग डी लुहार गडुंग कमंत्रियान प्रतहानान डी डमस्कस कमारिन कमंत्रियान प्रतहानान मैयाता कान बाबा पारा प्राजुरित तला मनमू कान सबुआ बॉम यंग सियाप डी लडाकान डी कावासान प्रसाद बाब सर की डी डमस्कस कमंत्रियान कसेयातान रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कांगो कमारिन मैयाता कान बाबा बाबा इबोला बर्मूला बबरापा मिंगू यंगलालू डिंगान जुमला कुरवान तेवास किनी मनिकात मंजडी सरातुस्तिगा पुलु सातु ओरांग मंत्री कसेयातान कांगो सामुएल रोजर काम्बा मंगाता कान बाबा पई लिडिकान सडांग बरलांग सुंग उन्तुक ममास्तिकान आपका कमातियान कमातियान तर सबूत सरता लीमा रातुस्तिगा ब्लास कासुस यंगडी चुरीगाई बनार बनार तरकाई डिंगान पैया की तर सबूत डायरेक्टर जनरल ऑर्गनासी ऑर्गनाइजेशन का से आतान दुनिया वेहा ओ टेड्रोस आधानोम ग्रेबे येसुस मैयाता कान का प्रयातिनान मंडालाम आतास पये बारान यंग चपा डनस्काला बाबा यंग क्यान मलुआस सराया मनाम्बा कान बाबा कोमिते डारुरात लंबागा तर सबूत आकान मंगाडा कान परतमुआन पारा हारी कमारिन पारा पजावात मंपरिंगात कान बाबा आंका आंका तर सबूत का मुमकिनान प्रसार आकान तरुस मनिकात सहरिंग डिंगान डी परलुआसिया उपाया पंगावासान कमंत्रियान प्रतानान उन्हीं अमीरात अरब कमारिन मैयाता कान बाबा ड्रोन यंग मनारगित कान पम्बांकित लिस्त्रिक तनागा न्यूक्लियर बाराका बस बरासाल डरी इराक सबलूमिया ड्रोन मयरांग आर्या पेरीमीटर पम्बांकित लिस्त्रिक तनागा न्यूक्लियर बाराका डी विलाया अल डाफरा ममीचू का बाकारान पाडा सबुआ गेनेरातो लिस्ट्रिक यंग बराडा डी लुआर बातास डालम फासिलतास दर सबूत ब्लू माडा क्लोम्पोक यंग मैयाता कान बरताऊ जावा वाता स्रांगानी नी मस्किपुन ईरान डन क्लोम्पोक क्लोम्पोक प्रोक्सिया संपात डी चुड़गाई तरलीबात कमंत्रियान का सियातान लेवानोन मैयाता कान बाबा जुमला कुरबान तेवास आकीबाद स्रांगान स्रांगान इसराइल सलामा कॉन्फ्लिक्ट यंग सडांग बरलांग सुंग डिंगान हिजबुल्ला किनी तला मलामपावी आंका तिगा रिबू जीवा मनरुद का मंत्री अंतर सबूत सकुरांग कुरांग या तिगा रिबू डुआ पुलु ओरांग तेवल तला तेवा सिंगा कमारिन मनांडाई स्कालासी का क्रासान बसार लाइन या मस्किपुन गंचातान संजाता यंग बरलाकू साथ इनी तरगोलोंग रापू कॉन्फ्लिक्ट तर सबूत क्यान ममानास पाडा तांगल डुआ मारे थतला हिजबुल्ला क्लोम्पोक मिलितान सूर्या यंग डी डुकुंग ईरान मलुनचुरकान सांगान रॉकेट का आरा इजराइल मयूसुल सांगान इजराइल यंग डिलापुरकान मनवास कान सौरांग तोको पंतिंग यंग डका डिंगान पमिपिन तर तिंगी ईरान सबुआ जेत तंपुर एफ आनाब्लास रोमानिया यंग बर ओपरासी सवागे बागेंडरी मिसी पात्रोलियो डारा बाल्टिक नाटो लीलापुर का तला मनम्बाक जातु सबुआ ड्रोन यंग डीडुगा मिलिक उक्राइना डी आतास विलाया इस्तोनिया तंगा कमारिन इंसिडेंट इनी मरुपाकान यंग तरबारु डरी सरंकायान कासुस डालम बबरापा बुलान तराखी डिमाना ड्रोन ड्रोन उक्राइना यंग मनार्गित कान रूसिया एंता मलिंतासी मासुका विलाया नातो अताव जातु डी डालामिया परिस्तिवा परिस्तिवा इनी क्यान मनिकात साइरिंग की मंग इंटेंसिव कान कंपनी पंगुना ड्रोन या उन्तुक मई रंग इंफ्रास्ट्रक्चर

नेताल प्रधानमंत्री इंडिया मंगुंडांग प्रधानमंत्री स्तोरे उन्तुक बड़कुंजुंग का इंडिया डालम सबुआ उपाचार्य खुसूस डी ओस्लो राजा हराल्ड वे डरी नॉर्वेगिया मंग अनुग्रह कान ग्लार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेगियन ऑर्डर ऑफ मेरिट कपाडा प्रधानमंत्री मोदी पंगहारगान इनिम रूपाकान तांडा कहोर मातान तरतिंगी नॉर्वेगिया यंगडी बड़ीकान कपाडा कपाला पमनिताहान आसिंग सभागे पंगाकुआन आता जासा जासा लुआर ब्यासा डमी का पंथिंगान नॉर्वेगिया डन उमात मानुष्या प्रधानमंत्री मोदी मैया पेकान रासा तरिमा काशी या डन यंग मंडालाम कपाडा राजा हराल्ड वे सरता रायत नॉर्वेगिया आतास कहोर मातान तरसबू डिया मंडेडी काशिकान पंगहारगान इतु बागी परसाहवातान बरसजारा अंतर इंडिया डन नॉर्वेगिया सराया मयबूतिया सभागे सबुआ पंगोर मातान तराडाप का हंगातान कपरचायान डन काशी सायंग यंग स्नातियासा तरजालिंडी अंतरा रायत इंडिया डन रायत नॉर्वेगिया प्रधानमंत्री इंडिया जुगा मलाकुकान ऑडियंसी डिंगान राजा हराल्ड वे डिंगान डरी नॉर्वेगिया डी इस्ताना का राजा आन प्रधानमंत्री मैया पेकान सालाम डान हरापान तरबाइक डरी रायत इंडिया डिया मैया तकान का खगुमान या तरहाडाप का इंडाहान आलाम नॉर्वेगिया डान मनगास कान बाबा पर सहावातान यंग तलाह लामा तरजाली नांतारा इंडिया डान नॉर्वेगिया तरुस तुम्बू समाकिन कुआत बड़ लांडास कान पाडा नीले नीले बरसामा याकनी डेमोक्रेसी सुप्रीमासी हुकुम डान तातकलोला पमरिंताहान यंग बरपुसात पाडा रायत प्रधानमंत्री मोदी डान राजा हराल्ड लिमा मन डिस्कुसी कान कमाजवान प्रसाद यंग तला डिचापे ओले परुसान परुसान इंडिया डान नॉर्वेगिया डी बरवागे सेक्टर खुसूसियाँ डालम बिडांग टेक्नोलॉजी बारू ऑडियंसी तरसबू डी लांजुत कान डिगान कमाजवान माकान सिडांग यंग डिसलंगारा कान ओले सांग राजा सभागे बंतुक पंगोर मातान बागी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मंगहाडरी कातेते बिजनेस डान पनरित्यान इंडिया नॉर्वेगिया डी ओस्लो पुत्रा माकोता नॉर्वेगिया हाकोन डान प्रधानमंत्री नॉर्वेगिया जोनास घर गा स्तोरे जुगा तुरुत बर पार्टिसिपासी डालम कातेते तर सबूत प्रधानमंत्री मंग आप्रेसियासी परतुम्बुआन पडांगान डान इन्वेस्टासी बिलात्राल यंग तर जडी डियान मनकान कान कुआतियां लिंतासान परतुम्बुआन इंडिया यंग तरुस मनांजाक बोनुस डेमोग्राफी गेनरासी मुडा यंग बरबाका डन पनु आस्पिरासी प्राकृतिक बिजनेस यंग तांगू क्रांका रेगुलासी यंग रामा इन्वेस्टोर सरता समांगात फेडरलिज्म यंग कॉम्पिटिटिव डिया मंडोरोंग पनिकातान इन्वेस्टासी नॉर्वेगिया डी इंडिया पाडा सेक्टर सेक्टर कुंची सपर्ती इकोनॉमी बीरू पम्बुआतान कापाल ट्रांसेसी हिजाओ एनर्जी तरबारुकान टेक्नोलॉजी का सेहतान मिनरल क्रितिस डान परुसाहान रिंतिसान कातेते इंडिया नॉर्डिक कतिगा जुगा डिसलंगारा कांडी ओस्लो डिमाना प्रधानमंत्री मोदी बर्तमु डिगान पाड़ा पमिपिन डरी कलीमा नगारा नॉर्डिक नॉर्वेगिया डेनमार्क फिनलैंडिया इस्लैंडिया डान स्वीडिया सकियान इतु ताडी कमेंटार छोटा छोटा पंडगा डिसनी सियारान लुआ नगरी आकाशवाणी सेक्सी भाषा इंडोनेशिया इंडिया किनी कुतिला आचारा लागू रायत इंडिया डालम आचारा इनी कामी मंगेबुर अंडा डिगान सबुआ लागू डरी डायरा बिहार।

0: जाने आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में

0: तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं

0: पहली जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
2: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
3: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य

0: अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st, Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed.

0: Iman Singh Stadium in Jaipur last night, chasing a target of 221 runs set by Lucknow Super Giants. Rajasthan Royals scored 225 for 3 with 5 balls to spare. Dhruv Jurel scored an unbeaten 53 runs, while Yashasvi Jaiswal made 43 runs. And now for a look at today's newspapers is over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Abhishek. In a joint article penned by PM Narendra Modi and Italy's PM Giorgia Meloni in The Pioneer, headlines Italy and India, a strategic partnership for the Indo-Mediterranean. The article says Made in Italy has always been synonymous with excellence worldwide, and today it finds a natural synergy with the high quality of goals of the Make in India initiative. US clears Apache how its support services for India, writes the Indian Express. Supreme Court upholds citizens' right to live free from fear of stray dog attacks, informs the Statesman. Top court nod for euthanasia of incurably ill rabid dogs, states the Hindu. The Economic Times in its editorial piece says the real question, OpenAI's win Musk's ethical AI development arguments remain. The paper says Elon Musk's case against OpenAI turning into a for-profit organization fell apart on a technicality, but the central question on how OpenAI should be governed remains unanswered. Sam Altman's argument is that its mission drift from non-profit to for-profit was necessitated by the financial reality of the tech's large investment requirements. And finally, tennis legend Billie Jean King, at the age of 82, earns a college degree, Bachelor of Arts in History, 65 years after starting at Cal State Los Angeles, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर के बारे में ताउन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरक कलीदी अमली मंसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की जीडीपी की शरह तरक्की में 1.6% का इजाफा हो जाएगा। डीजीसीए ने इस साल के अवाइल में एयर इंडिया के बोइंग 787-8 तैयारे में तकनीकी खराबी के तनाजुर में ईंधन कंट्रोल स्विच का मजीद मुआयना किए जाने का हुक्म दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे, जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी के हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक जियाफत का अहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी आनंद तारा पलाजो नईदी होटल पहुंचे, जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार

0: करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट जियांपाओलो टोमा सेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की, जो वाराणसी के घाटों और भारत के कदीम और दायमी शहर की सकाफती और रूहानी झलक पेश करने के लिए खासतौर पर बनाई गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जनाब मोदी आज क्यूरिनल पैलेस में इटली के सदर सर्जियो मेटरेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जनाब नरेंद्र मोदी की आज की मसरूफियात में वफूद की सतह की बातचीत, प्रेस बयान, मुफाहमत नामों का तबादला, दो तरफा मीटिंगें और खुराक और ज़राअत की तंजीम का दौरा भी शामिल हैं। जनाब मोदी ब्लैक मलबरी का एक पौधा भी लगाएंगे, जो खाने, तिब्बी और उसकी सकाफती अहमियत के जरिए भारत और इटली को अलामती तौर पर मुनसलिक करता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: इससे पहले कल भारत और नॉर्डिक मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराई कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने का ऐलान किया। इन मुल्कों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान भारत में नॉर्डिक मुल्कों की सरमायाकारी में 200% का इजाफा हुआ है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हालिया तिजारती समझौतों के साथ एक नए सुनहरे दौर में दाखिल होंगे, जिसमें तिजारती और इक्तिसादी साझेदारी नीज भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का माहदा भी शामिल है। दहशतगर्दी के मामले पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मामले पर दोनों मुल्कों का वाज़ेह और मुश्तरका मौकफ है, कोई समझौता नहीं और कोई दोहरा मेयार नहीं।
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: पेश है वज़ीर आज़म के नॉर्वे के दौरे के बारे में एक रिपोर्ट।
3: तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के मुश्तरका मकासद और तसव्वुर का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने भारत नॉर्डिक ताल्लुकात को माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और इख्तराई दिफाई शराकतदारी तक के ले जाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने ओस्लो के अपने दौरे में कसीर मुल्की और दो तरफा सरगर्मियों के तहत माहौल के लिए साजगार राहदारी, समुद्री मईशत, जहाज़ों की तामीर, सेहत, दिफा जैसे मैदानों में नॉर्डिक सरमायाकारी को दावत दी है। भारत ईयू आज़ाद तजारती समझौते और टेपा मुआहदे के रोशनी में उन्होंने नॉर्डिक خطے کے ساتھ مضبوط تر اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی بھارت کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پہلگام میں

0: दहशतगर्दाना हमले समेत हर तरह की दहशतगर्दी की एक आवाज़ में सख्त मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने भारत नॉर्डिक तआवुन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म को दोहराया। अब अगली भारत नॉर्डिक समिट फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में मुनाक़िद होगी। ओस्लो से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद ख्वातीन को उनकी समाजी व इक्तसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपये की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम ख्वातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की पहली तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल ख्वातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत ये है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स अदा ना करते हों, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हों, या उन्हें रियासत या मरकजी कानूनी पंचायती बल्दियाती मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन ना मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 दर्जात की एक फेरिस्त जारी की है। ये फेरिस्त कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% रिजर्वेशन मंसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के 66 तबकों की फेरिस्त शाय की है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में पीपी चौधरी की क्यादत में जेपीसी के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी एमके दास, डीजीपी डॉक्टर केएलएन राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक मुल्क एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। जेपीसी में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं आलमी सेहत असेंबली में सबके लिए सेहत बीमा, डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है और दिन का टेम्परेचर कई मकामात पर 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हत्ता के रात में भी मौसम गर्म है और कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मध्य प्रदेश में भी शदीद गर्मी का जोर जारी है। रियासत में पहली मर्तबा दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी और लू चलने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने डीजीसीए के अफसरान की मौजूदगी में असली कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में एयर इंडिया के एक बोइंग 787-8 तैयारी के ईंधन को कंट्रोल करने वाले स्विचेस के मुआयने की हिदायत दी है। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया के इस तैयारे VTNX को इस साल 2 फरवरी को जमीन पर उतार लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC हेडक्वार्टर्स में होगा। तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत स्वरगंगा के कार्यक्रम में उज्ज्वल नागर का गाया राग गुजरी तोड़ी। तराना राग मियाँ की तोड़ी में था। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

당근. नमस्कार। दोपहर के इस खूबसूरत पल को बनाइए थोड़ा और ख़ास, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना, आपके जीवन से जुड़ा और आपके दिल के बेहद करीब कार्यक्रम घर आंगन। मैं हूँ श्रुति पुरी और अगले 50 मिनट तक हम करेंगे बातें ज़िंदगी की, घर की, परिवार की, रिश्तों की, सेहत की, समाज की और तमाम उन मुद्दों की जो कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन का हिस्सा हैं। तो जहाँ भी हैं आप, घर पर, ऑफिस में, सफ़र में या फिर अपने दिन की किसी भाग दौड़ के बीच, तो थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालते हुए बस जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर भी हमारा आपका साथ बना रहेगा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं AIR न्यूज़ लाइव 24/7 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा साथ रहेगा दोपहर 1 बजे तक। आपके सुझाव, सवाल और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, इसलिए हमें लिख भेजिए fmgoldg@gmail.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र, नई सोच, नई जानकारी और सकारात्मक बातचीत से, क्योंकि बातें वही जो जुड़ी हों आपकी ज़िंदगी से। लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म तकदीर में।

श्रोताओं, अब समय है सुविचार का और आज का सुविचार है सुंदर हे विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। कवि सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियाँ हमेशा मन को छू जाती हैं। इसका सरल अर्थ है, पक्षी सुंदर है, फूल भी सुंदर हैं, लेकिन मनुष्य इन सबसे अधिक सुंदर और श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे विचार, संवेदना, सृजन और मानवता का अनमोल वरदान मिला है। और आप सोच रहे होंगे कि हमने आज इस खूबसूरत विचार से शुरुआत क्यों की है, तो बता दें कि आज हिंदी साहित्य के प्रकृति और सौंदर्य के अप्रतिम कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती है। पंत जी ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सौंदर्य को जितनी खूबसूरती से उकेरा, उतना ही उन्होंने मानव जीवन के मूल्यों और संवेदनाओं को भी महत्व दिया। उनकी पंक्तियां हमें बहुत सहज तरीके से ये समझाती हैं कि मानव जीवन अपने आप में एक सौभाग्य है और इसकी सार्थकता भी तभी है जब हम अपने भीतर संवेदनशीलता, करुणा और सकारात्मकता को जीवित रखें। और श्रोताओं, आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल जी की पुण्यतिथि भी है, हम उनको सादर नमन करते हैं। आपका जन्म अविभाजित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के सिलहट जिले में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आप प्रसिद्ध राष्ट्रवादी तिकड़ी लाल बाल पाल के अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ थे। क्रांतिकारी बिपिन्द्र चंद्र पाल ने वर्ष 1905 के बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी और 1907 के वंदे मातरम राजद्रोह मामले में महर्षि अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने से साफ इनकार करने पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 6 महीने के कड़े कारावास की सजा सुनाई थी। बिपिन चंद्र पाल एक प्रखर विचारक, प्रख्यात वक्ता और ओजस्वी पत्रकार थे। उन्होंने न्यू इंडिया, वंदे भारत, परिदर्शक और स्वराज जैसे प्रभावशाली समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया। सामाजिक सुधारों के पक्ष में आवाज उठाई, रूढ़िवादी जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह करके समाज के सामने प्रगतिशील मिसाल प्रस्तुत की। द सोल ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रवाद और नेशनलिटी एंड एम्पायर जैसी कालजयी पुस्तकों की रचना भी आपने ही की। बिपिन चंद्र पाल की बहुचर्चित आत्मकथा मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स भारत के तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य और

स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को समझने का एक अत्यंत प्रमाणिक दस्तावेज है। और हम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल को उनकी पुण्यतिथि पर आज के दिन शत शत नमन करते हैं। गुड्डी फिल्म में अभी आप वाणी जयराम को सुन रहे हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं।

0: याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, प्रकृति ने हमें अनगिनत अनमोल उपहार दिए हैं। नदियां, पर्वत, पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल। लेकिन इन सब के बीच एक नन्हा सा जीव ऐसा भी है जो आकार में भले ही छोटा हो लेकिन प्रकृति के संतुलन और हमारे जीवन में उसकी भूमिका बेहद बड़ी है, और वो है मधुमक्खी। फूलों से रस लेकर शहद बनाने वाली मधुमक्खियाँ केवल मिठास ही नहीं घोलती बल्कि फसलों के परागण के महत्वपूर्ण योगदान देकर हमारी खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को भी बनाए रखती हैं। इन्हीं नन्ही मेहनतकश जीवों के महत्व को रेखांकित करके और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और रासायनिक कीटनाशकों का अधिक उपयोग मधुमक्खियों के अस्तित्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में प्रकृति को संतुलित और सुरक्षित रखना है तो इन नन्हे परागणकर्ताओं की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने में अपना छोटा सा योगदान अवश्य देंगे, और प्रकृति की इस मधुर गूंज को सुरक्षित रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है ना? मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म आराधना में।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

साथियों, सुबह की शुरुआत से लेकर रात के अंतिम पहर तक हमारा पूरा जीवन ऊर्जा पर निर्भर है। रसोई में चूल्हा जलाने के लिए एलपीजी, यातायात के लिए डीजल पेट्रोल, घरों और उद्योगों के लिए बिजली और शहरी जीवन में तेजी से बढ़ता पीएनजी का उपयोग। ऊर्जा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सुविधा के इस निरंतर उपयोग के बीच हम ये भूल जाते हैं कि ऊर्जा संसाधन असीमित नहीं है, वो सीमित हैं। आज वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या, तेज रफ्तार जीवन शैली और औद्योगिक विकास ने ऊर्जा खपत को कई गुना बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम पदार्थों पर अत्यधिक निर्भरता न केवल आर्थिक चुनौती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, थोड़ी सी दूरी के लिए जाने पर वाहन की जगह पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना, कार पूलिंग अपनाना और रसोई में गैस का अनावश्यक उपयोग न करना और ज़रूरत के अनुसार ही ईंधन का उपभोग करना, आज के समय में केवल ऊर्जा संरक्षण ही नहीं बल्कि ऊर्जा संचयन का भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। ये सौर ऊर्जा का संग्रह हो, बैटरी स्टोरेज हो या घरेलू स्तर पर ईंधन की अनावश्यक बर्बादी रोकना, हर प्रयास आने वाले कल को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक कदम है। ऊर्जा केवल सुविधाओं का माध्यम नहीं है बल्कि विकास और भविष्य की आधारशिला भी है। आज यदि हम ऊर्जा को बचाना और संचित करना सीख लें तो आने वाली पीढ़ियों को एक अधिक सुरक्षित और संतुलित दुनिया हम दे सकते हैं। दादा फिल्म में अभी आप हेमलता, मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह और दिलराज कौर को सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, कुछ भी सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, हम आकाशवाणी के 90 वर्ष का जश्न मना रहे हैं और आकाशवाणी में बच्चों के कार्यक्रम का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। 1930 के दशक में अपनी शुरुआत से ही इसने बच्चों के मनोरंजक और शिक्षा और सर्वांगीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब 1936 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, तभी से बच्चों के लिए कहानियां और नाटकों का प्रसारण शुरू हो गया था। उस समय का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना था। 1940-50 के दशक में बच्चों के कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए। विभिन्न केंद्रों जैसे दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से बाल सभा और खिलौना घर जैसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए रेडियो प्रस्तोता को अंकल, दीदी या दादा जैसे आत्मीय संबोधन दिए जाते थे। बच्चों को पत्र लिखने और अपने कार्यक्रम में शामिल करने की अनूठी परंपरा भी शुरू हुई। 1960 से

1980 का दशक वो दौर था जब बच्चों ने रेडियो नाटकों, कविताओं के पाठ और संगीत कार्यक्रमों में खुद ब खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस 14 नवंबर के मौके पर विशेष कार्यक्रमों का निर्माण होता था जिसे पूरा देश सुनता था। विविध भारती और क्षेत्रीय प्रसारण पर भी बच्चों के लिए नन्हे मुन्ने, बाल गोपाल और बाल जगत जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम आए। वहीं क्षेत्रीय केंद्रों जैसे दिल्ली, शिमला और जयपुर से स्थानीय बोलियों में भी बच्चों के लोकगीत और कहानियाँ प्रसारित की गईं, जिससे ये गांव-गांव तक भी पहुंच पाया। आधुनिक युग और डिजिटल मंच यानी 2000 के बाद टेलीविजन और इंटरनेट के युग में भी आकाशवाणी ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। अब बाल कार्यक्रम FM चैनलों और क्षेत्रीय केंद्रों दोनों के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इन कार्यक्रमों में अब पर्यावरण संरक्षण, सामान्य ज्ञान और नई शिक्षा नीति से जुड़े विषय शामिल होते हैं। तो आज भी जो ये बच्चों के कार्यक्रम हैं, ये बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता को पंख देने का काम कर रहे हैं।

0: मिस्टर नटवरलाल, इस फिल्म में अभी आप अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि को सुन रहे हैं।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: आ रहा था। नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10:15 का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।

मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दार दार, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो।

श्रोताओं, कहा जाता है कि अगर भारत एक रंगमंच है तो दिल्ली उसका सबसे जीवंत मंच है, जहां इतिहास भी सांस लेता है और आधुनिकता भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाती है। राजधानी दिल्ली केवल एक शहर नहीं, बल्कि अनेक संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं, स्वादों और अनुभवों का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि दिल्ली को अक्सर दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली का इतिहास अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। इसे इंद्रप्रस्थ के रूप में भी जाना जाता था और दिल्ली ने कई राजवंशों जैसे तोमर, चौहान, दिल्ली सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश शासन को आते जाते देखा है। शायद यही कारण है कि दिल्ली को अक्सर सात शहरों का नगर भी कहा जाता है। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला आज भी इस गौरवशाली विरासत के साक्षी हैं। इनमें से कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। दिल्ली भारत का राजनीतिक केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यहाँ देश की संसद, सर्वोच्च न्यायालय और प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं। दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है और विश्व के बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में भी शामिल है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली को विशेष पहचान देते हैं। उच्च शिक्षा में दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हैं। दिल्ली के खान पान, आहा, वो तो उसकी आत्मा है। यहाँ का स्ट्रीट फूड दुनिया भर में मशहूर है। चाट, गोलगप्पा, पराठे, छोले भटूरे, दही भल्ला, कबाब और बटर चिकन के नाम आते ही दिल्ली की याद आ जाती है। चांदनी चौक, पराठे वाली गली का स्वाद और पुरानी दिल्ली के व्यंजनों की खुशबू दिल्ली को और भी खास बनाती है। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो दिल्ली में इतिहास और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेंपल, जंतर मंतर, कैनॉट प्लेस और दिल्ली हाट यहाँ आने वालों को अलग अलग अनुभव प्रदान करते हैं। दिल्ली का जीवन अपने आप में बेहद मनमोहक और बहुरंगी है। सुबह की चाय से लेकर देर रात तक चलने वाली चहल पहल और लोगों का जीवंत स्वभाव सब मिलकर दिल्ली को खास बनाते हैं। यहाँ हर राज्य की संस्कृति को स्पर्श मिलता है, इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहना गलत नहीं होगा। शायद इसीलिए दिल्ली को केवल देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है और शायद यही है दिल्ली का दिल्ली नामा, एक ऐसा शहर जो हर बार कुछ नया सुनाता है, दिखाता है और हर एक के दिल में जगह बना लेता है। तीन बहुरानियां इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, अब बात करते हैं आस पड़ोस की। एक वक्त था जब पड़ोसी परिवार का हिस्सा माना जाता था, घर की चाबी भी उनके पास रहती थी और खुशियों से लेकर मुश्किलों तक हर बात में उनकी मौजूदगी होती ही थी। लेकिन आज ऊंची दीवारें और व्यस्त जीवन शैली ने इस रिश्ते को थोड़ा सा सीमित कर दिया है। फिर भी सच्चाई यही है कि सबसे पहले मदद के लिए जो दरवाज़ा खुलता है वो पड़ोसी का होता है। ज़रा सोचिए, घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, बच्चों को थोड़ी देर के लिए किसी के पास छोड़ना हो या घर की छोटी मोटी ज़रूरत हो, ऐसे में सबसे पहले कौन याद आता है? वो होता है आपका पड़ोसी। सुबह की एक मुस्कान, सुरक्षा का एक एहसास, घर के आसपास का ध्यान रखना, एक दूसरे की अनुपस्थिति में घर पर नज़र रखना, ये सब बातें बिना कहे ही एक मजबूत भरोसा बना देती हैं। वही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सुख दुख के साथ ज़रूर खड़े हों, ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करें और उन्हें एक स्पेस दें, प्राइवेसी का सम्मान करें उनकी। छोटे छोटे व्यवहार जैसे त्योहारों पर मिठाई बांटना, हालचाल पूछना या बच्चों के साथ खेलने देना, बच्चों को साथ में खेलने देना, ये सब और रिश्तों को गहरा ही बनाते हैं। दरअसल एक अच्छा पड़ोस एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है जो ज़िंदगी को सुरक्षित बनाता है और खूबसूरत भी, क्योंकि जब पड़ोसी दोस्त बन जाते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी आसान और बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाती है। धर्मवीर फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर और आशा भोसले को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, हल्की हल्की मुस्कान, कुछ मीठी सी बातें और दिल में ठहरती हुई ये गर्माहट, बस यही तो है हमारे घर आंगन की पहचान। तो आज की ये महफिल यहीं सिमटती है, लेकिन इसके एहसास आपके साथ चलते रहें, यही तो हमारी ख्वाहिश है। मैं आपकी अपनी होस्ट श्रुति पुरी आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा न्योता, आपके अपने दिल की बातें, अपने किस्से, अपने सुझाव हमें ज़रूर लिख भेजिए हमारे fmgoldga@gmail.com पर, क्योंकि आपका साथ ही तो इस घर आंगन को सच में घर बनाता है। तो अब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों, नए एहसासों और उसी अपनेपन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और सुनिए ये गीत प्यारा सा कारवां फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आनग्यू बैग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

से, मैं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज को आईना भी दिखाती है। हम बात कर रहे हैं 1968 में आई फिल्म इज्जत की। ये फिल्म अपने दौर की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें प्यार, सामाजिक भेदभाव और इंसानियत के भावनात्मक रंग बहुत खूबसूरती से दिखाए गए थे। आज की फिल्म इज्जत में हम बात करेंगे फिल्म की कहानी, कलाकारों और गीत संगीत और उससे जुड़े दिलचस्प किस्सों की।

दोस्तों, फिल्म इज्जत का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक टी प्रकाश राव ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी धर्मेंद्र, तनुजा और जयललिता ने। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतों की रचना की थी साहिर लुधियानवी साहब ने। यही वजह थी कि लक्ष्मी प्यारे और साहिर की जोड़ी से फिल्म का संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ। आपको ये भी बता दें कि फिल्म दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और राजनेता जयललिता की एकमात्र हिंदी फिल्म होने के लिए जानी जाती है। उन पर फिल्माया गीत भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा था।

तो उस फिल्म का सबसे मशहूर गीत था ये दिल तुम बिन लगता नहीं, जिसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी। ये गीत आज भी रेडियो श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। इसके अलावा फिल्म के गीतों में साहिर लुधियानवी की शायरी दिल को छू लेती है। गीतों में एक तरफ जहां शरारत, नोकझोंक और प्यार के एहसास हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्द और संवेदना का एहसास भी मिलता है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल, और हमारी आज की फिल्म है इज्जत। दोस्तों, फिल्म की कहानी समाज में ऊंच नीच और इंसान की असली इज्जत के अर्थ को समझाती है। धर्मेंद्र ने फिल्म में एक आदिवासी गरीब युवक का किरदार निभाया। वो सीधा साधा, ईमानदार और दिल का साफ इंसान होता है, लेकिन समाज उसे उसकी जाति और हैसियत की वजह से कमतर समझता है। दूसरी तरफ तनुजा का किरदार पढ़ा लिखा और सभ्य परिवार से जुड़ा होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपता है, लेकिन समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। फिल्म यही एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या इंसान की पहचान उसकी जाति और हैसियत से होती है, या उसके चरित्र और इंसानियत से। कहानी आगे बढ़ती है और कई भावनात्मक मोड़ आते हैं। गलत फहमियाँ, संघर्ष और समाज की कठोर सोच दोनों प्रेमियों की राह मुश्किल बना देती है, लेकिन अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्ची इज्जत इंसान के कर्मों से होती है।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। ये मेल हमें मिला है सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा का अनारकली बाज़ार जगराव से, और इनको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। और अब बढ़ते हैं दूसरे मैसेज की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है गांव खाड़ी खेड़ा ज़िला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा ने। आप हैं मांगेराम सतौड़ चौधरी बास हरियाणा से, नागर कोहरा ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और बेबीस आराध्य साहू, राजू अग्रवाल केशव दक्ष प्रियांशी चौधरीवास हिसार से, और आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। पंकज शर्मा जी हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं मॉडल टाउन करनाल से, आपके साथ है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, प्रजापति और प्रताप प्रतिभा शर्मा। आप हैं बिरम गांव जंक्शन से अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, छत्तीसगढ़ पराली से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, और आप हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगवेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफ रीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलुफर फातिमा और उनके परिवार के सभी लोग। वर्किंग वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। आप हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता पीपरिया से, और संदीप मक्कड़ जी हमें भेज रहे हैं अपना मैसेज जालंधर से, आपके साथ है ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत मक्कड़ और कमल साहनी पिंगा वाले चौक से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, कुरलाल सिंह और अविराज सिंह गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। आप हैं फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा, शालिनी दिवांशी वाणी खेड़ा, आर बीजेड़ खेड़ा, जीवन सिंह बूक और उनके परिवार के सभी लोग। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। आप हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से। आप हैं जलालाबाद वेस्ट से पूनम गगनेजा और सुरेश गगनेजा। बबलेश पवार जी गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से अपना मैसेज भेज रहे हैं, और नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएन नवाटकर, निर्मला और विशाल। कबीर रेटू श्रोता संघ से देव शंकर तामुरिया, जयदेव तामुरिया।

या तुषार देव और मास्टर अलकबीर, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा और दत्रेकी से। तो आप सबके मैसेज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहानी सुनने के साथ साथ मैसेज भी कर रहे हैं। और बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। दोस्तों, आपको बता दें कि धर्मेंद्र का आदिवासी किरदार उस समय काफ़ी अलग माना गया था। जयललिता बाद में दक्षिण भारत की बहुत बड़ी अभिनेत्री और फिर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। फिल्म की शूटिंग प्राकृतिक स्थानों में की गई थी, जिससे पर्दे पर एक अलग ही सौंदर्य दिखाई देता था। उस दौर में सामाजिक भेदभाव पर आधारित फिल्मों की संख्या कम थी, इसलिए इज्जत को एक संवेदनशील फिल्म माना गया। धर्मेंद्र को अक्सर दर्शकों ने रोमांटिक और एक्शन हीरो के रूप में देखा था, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने आदिवासी युवक की मासूमियत और दर्द को बेहद शानदार तरीके से पर्दे पर निभाया। फिल्म देखने वाले दर्शकों ने उनके अभिनय की खूब तारीफ की।

जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग

दोस्तों, इज्जत सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंसानियत और बराबरी का संदेश देने वाली कहानी है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़े, पैसे या जाति से नहीं बल्कि उसके दिल और व्यवहार से होती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा की एक और यादगार कहानी के साथ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1:40 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में मैं अमन देव

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत इटली इक्तिसादी इश्तराक को फ़रोग देने के लिए आज रोम में इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने भारत इटली कलीदी शराकतदारी के लिए आइंदा का लाए अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरका मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तिसादी इकदामात को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिसाइल V3 का कामयाब तजुर्बा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दुमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शिमाली और वसी हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। और IPL क्रिकेट में आज ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आज इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मीटिंग में भारत इटली ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने के बाद उन्हें डिनर पर वज़ीर आज़म मेलोनी से मुलाकात करने और तारीखी कोलेजियम जाने का मौका मिला। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौजूआत पर अपना अपना नुक्ता नजर पेश किया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आज की बातचीत में भारत इटली दोस्ती को फरोग देने पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी और सदर सर्गियो मटरेला के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें भारत और इटली के दरमियान तआवुन को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के दौरान भारत और इटली के दरमियान तआवुन को फरोग देने, खास तौर से भारत मगरबी एशिया यूरोप इकतसादी कॉरिडोर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे 2025 से 2029 तक का भी जायजा लिया जाएगा। जनाब मोदी खुराक और ज़राअत की तंजीम के सदर दफ्तर का भी दौरा करेंगे और कसीर जहती निज़ाम और पूरी दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अहद को मजीद मुस्तहकम करेंगे। भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में गुज़िश्ता बरसों में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है और अब ये एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से तहरीर करदा एक मुश्तरका मजमून में दोनों रहनुमाओं ने इस बात को उजागर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते खुशगवार दोस्ती से खुसूसी कलीदी शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं, जो जमहूरियत और मुस्तकबिल के मुश्तरका नज़रिए पर मबनी हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का जिक्र किया है कि एक ऐसे वक्त में कि जब आलमी निज़ाम में नुमाया तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं, भारत इटली शराकतदारी में आला तरीन सियासी और इदारा जाती सतहों पर मुसलसल राबतों से पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि इस शराकतदारी को नई सम्त मिल रही है, जिसे इक्तिसादी इन्फिरादियत, समाजी इख्तरा और दोनों मुल्कों के दरमियान सदियों पुरानी तहजीब से तहरीक हासिल है। दोनों रहनुमाओं ने इस मजमून में कहा है कि उनके इश्तराक से इस मुश्तरका समझ की अक्कासी होती है कि 21वीं सदी में खुशहाली और सिक्योरिटी का इन्हिसार मुल्कों की इख्तरा, तवानाई के बंदोबस्त, मुंतकली और इक्तदार आला को मुस्तहकम बनाने की सलाहियत पर होगा। दो कौमी रहनुमाओं में शाये मजमून में दोनों रहनुमाओं ने नए अहदाफ की हुसूलियाबी और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और वसत देने के अपने अहद का इयादा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक का मकसद इटली की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की महारत और भारत की तेज़ रफ्तार तरक्की, इंजीनियरिंग की सलाहियत, इख्तरा के इको निज़ाम और कारोबारी मजबूती के दरमियान मजीद तालमेल पैदा करना है। भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अंदरून मुल्क अपनी दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने की जानिब एक और अहम कदम उठाया है। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने बिना पायलट वाले एरियल व्हीकल से दागे गए प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल की तैयारी की कामयाब फाइनल आजमाइश की, जो मुल्क के दिफाई शोबे के लिए एक अहम हुसूलियाबी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आजमाइश आंध्र प्रदेश में कुरनूल के नजदीक DRDO के टेस्ट रेंज में फिजा से जमीन पर और फिजा से फिजा में दोनों तरीकों से की गई। आजमाइश के दौरान मिज़ाइल निज़ाम को एक जदीद मरबूत ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए अमल में लाया गया। इन आजमाइशों से जंग की मुख्तलिफ सूरतेहाल में मिज़ाइल के ठीक निशाने पर वार करने की सलाहियत और मोतबरियत का कामयाब मुजाहरा हुआ। इस मिज़ाइल को रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद में DRDO की दीगर लेबोरेटरियों के साथ इश्तराक में तैयार

0: किया गया है। मुकम्मल तौर पर अंदरून मुल्क तैयार किए गए इस मिज़ाइल से भारत के घरेलू दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम की बढ़ती हुई ताकत का इजहार होता है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें आने वाली मर्दमशुमारी के एक हिस्से के तौर पर जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सरकार की पॉलिसी के दायरे में आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमांदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। बेंच ने कहा कि इस तरह के आदादोशुमार इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है और उसने इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हम मनसब आन यूबेक्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान दिफाई सनद और अहम नौयत के इश्तराक को मजीद मुस्तहकम किए जाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों ममालिक इलाकाई अमन इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी में इश्तराक के तय अहदबंद हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि ये मीटिंग इंतहाई सूदमंद रही और भारत और जनूबी कोरिया ने दिफाई साइबर इश्तराक को फरोग देने के बारे में समझौतों का तबादला किया। मफाहमत के इकरारनामों का तबादला भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज, कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अक्वामे मुत्तहिदा कयाम अमन इश्तराक के दरमियान किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में बातचीत की जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और ईरान यूक्रेन और बैन अल-अक़वामी तिजारत समेत अहम आलमी उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि इस बातचीत से चीन और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक साझेदारी मुस्तहकम होगी और अक़वामे मुत्तहिदा SCO और ब्रिक्स जैसे फोरमों के जरिए इश्तराक में इजाफा होगा। पंजाब पुलिस ने दुबई में कायम मनशियात की स्मगलिंग के एक बैन अल-अक़वामी गिरोह का पता लगाया है जो अबूजहबी से अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहा था और साथ ही साथ रियासत पंजाब की सरहदी हिस्से और कौमी राजधानी दिल्ली में मनशियात पहुंचा रहा था। पंजाब और हरियाणा में शदीद गर्मी जारी है और दोनों रियासतों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 और 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह रहा है। मौसमियात के महकमे ने पहले ही खित्ते के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में वाकई मौसमियात के महकमे के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि मौसम बदस्तूर खुश्क रहेगा और आइंदा 3 से 4 दिनों में दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है। राजस्थान के ज्यादातर जिले इस वक्त शदीद गर्मी की गिरफ्त में हैं। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी के सबब आज 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने इस हफ्ते के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी और वसी हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद गर्मी की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 4 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान आसाम, मेघालय, केरलम, माहे, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक शदीद बारिश हो सकती है। IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी के शानदार 93 रन की इनिंग्स की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत इटली इक्तिसादी इश्तराक को फरोग देने के लिए आज रोम में इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने भारत इटली कलीदी शराकत दारी के लिए आइंदा का लाए अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरका मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तिसादी इकदाम को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिजाइल V3 का कामयाब तजुर्बा किया। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर अपनी मर्दमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शिमाली और वसी हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging Centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, host Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to discuss ways to boost India-Italy cooperation. With a focus on strengthening India-Italy relations, major pacts may be announced later in the day. Both leaders will exchange perspectives on a wide range of subjects. A series of programs will be held in Rome to mark the importance of bilateral relations between the two countries. PM Modi's visit will also focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed during the meeting. In a social media post before the talks, Prime Minister Modi expressed hope that the talks will focus on strengthening India-Italy relations. Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Prime Minister will be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. They said the partnership is acquiring a new dimension by combining the economic dynamism, societal creativity, and centuries-old civilizational wisdom of both nations. The two leaders said their cooperation reflects a shared understanding that prosperity and security in the 21st century will depend on the ability of nations to innovate, manage energy transitions, and strengthen strategic sovereignty. Defense Minister Rajnath Singh today held a meeting with his South Korean counterpart, Ahn Kyung-bak, in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defense industry, and strategic cooperation with a shared commitment towards regional peace, stability, and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said, "It was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defense cyber cooperation." The MOU was exchanged between the National Defense College of India, the Korea National Defense University, and the UN Peacekeeping Corporation. The minister said that he is looking forward to strengthening the special strategic partnership between the two nations. India has taken another important step towards strengthening its indigenous defense capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative. The Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully completed the final development trials of the unmanned aerial vehicle-launched precision-guided missile, V-3, marking a significant achievement for the country's defense sector. Defense Minister Rajnath Singh has complimented DRDO and termed it a strategic milestone achieved towards Atmanirbharta in defense. More from our correspondent.
3: The trials were conducted in both air-to-ground and air-to-air modes at the DRDO test range near Kurnool in Andhra Pradesh. During the tests, the missile system was operated through an advanced integrated ground control system designed to automate launch and operational readiness. The trials successfully demonstrated the missile's precision strike capability, reliability, and effectiveness.

0: आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक

0: क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है दोपहर के 2:30 और 20 सेकंड और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौर और आप सुन रहे हैं रेडियो इंद्रप्रस्थ। और हमारे आज के जो कलाकार हैं, यानी कार्यक्रम का नाम है एक ही कलाकार, इसमें आज जो कलाकार हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं। उनकी मुस्कान में पंजाब का भोलापन है, आंखों में अभिनय की गहराई है और रग रग में उनके सिनेमा बसता है। जी हाँ, तो आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं आपको, हाउस द जोश को हाई रखने वाले हमारे चहेते अभिनेता, कुछ समझ में आया? हाउस द जोश, जी हाँ, विकी कौशल की। तो चलिए अपने सीट की पेटी जल्दी से बांध लीजिए, क्योंकि आज विक्की के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो हम उनके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, साथ ही खूबसूरत सी गीतों के साथ जो उन्हीं के फिल्माए गए हैं।

दोस्तों, जब साल 2019 में सिनेमाघरों में ये गूंज सुनाई दी कि हाउस द जोश और सबने बोला हाय सर, तो हर हिंदुस्तानी का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो गया। इस डायलॉग को अपनी आवाज में अमर बनाने वाले और अपनी अदाकारी से हर किरदार में जान फूंकने वाले अभिनेता कोई और नहीं बल्कि हमारे आज के जनरेशन के सबसे टैलेंटेड और सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार विकी कौशल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलिशान जिंदगी जीने वाले विकी कौशल का जो बचपन है ना, वो मुंबई के एक चौल में गुजरा था। जी हाँ, काफी सारे संघर्ष से उठकर वो पहुंचे थे एक मुकाम पर। और अक्सर हमारे मन में यही बात होती है कि भाई जब कोई नेपो किड है या फिर कोई बॉलीवुड से रिलेटेड व्यक्ति है तो वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, उसका क्या है, वो पैदा हुआ है, उसको फिल्में मिल जाएंगी, उसको काम मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि विकी कौशल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया और उन्होंने ये मुकाम यूं ही हासिल नहीं किया है, उसके लिए बहुत लंबी यात्रा तय की है।

दोस्तों विकी कौशल जो हैं वो एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। 16 मई यानी कि इसी महीने सन 1988 को मुंबई के चौल में उन्होंने जन्म लिया और उनके पिता का नाम है श्याम कौशल, जो बॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद विकी कौशल ने अपना जीवन जो है वो चौल से शुरू किया और उनके पिता ने काफ़ी कुछ संघर्ष, काफ़ी कुछ अच्छा बुरा वक्त इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा, जिसकी वजह से उनके पिता खुद ये चाहते थे कि उनका बेटा कभी फिल्मों में नहीं आना चाहिए। इसीलिए वो चाहते थे कि वो उसका करियर सेटल हो और उसकी लाइफ में कोई अच्छी सी नौकरी हो जाए, अच्छा काम रहे जो लगातार चलता रहे, रुके नहीं। क्योंकि आपको पता ही है कि बॉलीवुड में एकदम से इंसान ऊपर चढ़ता है और कब गिर जाता है पता ही नहीं। तो वो बिल्कुल भी अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनको पढ़ाया और एक्टिंग में आने से पहले क्वालिफाइड इंजीनियर बने वो। उन्होंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और इसके बाद हम सब की तरह वो भी दर दर भटके जॉब के लिए। और कॉलेज के दिनों में वो एक आईटी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए, जॉब मिल भी रही थी, सोचिए उनको जॉब मिल भी रही थी, लेकिन ऑफिस के केबिन को देखकर विक्की को समझ में आ गया कि ना भाई, 9 से 5 की ये डेस्क जॉब तो मेरे लिए नहीं है, और उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन उस वक्त शायद उनके पिता को ऐसा लगा कि ये मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की, पर आज उनका सीना फक्र से चौड़ा हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपनी किस्मत मोड़ ली थिएटर की ओर, जबकि उनके पिता बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन विकी कौशल ने उन्हें गलत साबित कर दिया।

तो विकी कौशल भी घर से तो निकल गए थे, लेकिन मंजिल कहाँ मिलेगी, कदम कहाँ पड़ेंगे, उन्हें खुद नहीं पता था। वो रोज जाते थे एक तरीके से ऑडिशन देने के लिए, लेकिन आपको पता है वो रोज ही रिजेक्ट होकर आते थे। हम एक रिजेक्शन से घबरा जाते हैं, उन्होंने सैकड़ों रिजेक्शन झेले हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद भी उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। और अगर उनके करियर की बात करें तो विकी ने सीधे कैमरे के सामने कभी कदम नहीं रखा। उन्होंने सबसे पहले सन 2012 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, और फिल्मों में वो कभी हीरो बनेंगे ये तो वो सोचते ही नहीं थे। उन्हें लगता था छोटा मोटा रोल भी मिल जाए ना तो बहुत है मेरे लिए, और उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। लेकिन इसके बाद साल 2015 में आई वो फिल्म जिसने हिंदी सिनेमा को दिया नया हीरा, नाम थी फिल्म का मसान। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, ये डायलॉग सुनते हुए बहुत सारे लोगों के दिलों में वो छा गए। आंसुओं ने दर्शकों की आंखों से बहना मंजूर किया, लेकिन विकी कौशल को दिल में रखना।

दोस्तों, विक्की कौशल को मौका तो मिल गया था, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी था। विक्की रुके नहीं, बल्कि इसके बाद उन्होंने राजी फिल्म एक आई, उसमें संवेदनशील एक पाकिस्तानी अफसर का किरदार निभाया और मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया कि सच में उन्होंने अपनी जो छाप है वो दर्शकों के दिलों पर छोड़ दी। तो चाहे वो उनका राजी का कैरेक्टर हो या फिर संजू फिल्म, जिसमें वो संजय दत्त के साथ उनके दोस्त के रूप में एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में नजर आए, कमली नाम से कमली का याराना हो, या फिर बात करी जाए उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक पे वो जांबाज मेजर वेहान सिंह शेरगिल, जी हाँ, इसका कैरेक्टर प्ले किया हो। मतलब कैरेक्टर कोई भी हो, वो इस तरीके से घुस जाते थे कि ऐसे लगने लगता था कि ये कोई एक्टर नहीं, बल्कि ये तो एक गिरगिट है। जिस जगह पे इसे डाला जाता है, ये उस रंग में ढल जाता है। जी हाँ, हर तरह का किरदार उन्होंने प्ले किया। वो आर्ट फिल्मों की बात करें या फिर कमर्शियल फिल्मों की बात करें, उन्होंने हर जगह पर अपने आप को साबित कर दिया है। चाहे सैम बहादुर में फील्ड मार्शल सैम, मॉनिक शॉ के किरदार की बात की जाए, या सरदार उधम सिंह की बात की जाए, या फिर बात की जाए फिल्म बैड न्यूज़ के कैरेक्टर की, तो हर जगह पर। और उन्होंने इतना बढ़िया डांस किया था इस फिल्म में, बैड न्यूज़ फिल्म में, और ये जो गीत था ये सिर्फ उनके डांस की वजह से ही फेमस हो गया था। तो आप सुनना चाहेंगे वो कौन सा गीत था? चलिए आपको सुनवाते हैं।

दोस्तों बात चाहे रोमांस करने की हो या फिर डांस करने की हो या फिर एक्शन करने की हो, विक्की कौशल ने हर जगह पर अपने आप को साबित कर दिया है। और जब काम में इतनी शिद्दत होती है तो अवार्ड्स तो कदम चूमते ही हैं। विक्की कौशल की अलमारी भी अवार्ड से सजी हुई है। फिल्म मसान के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का आईफा और स्क्रीन अवार्ड मिला था। साल 2019 में उनके करियर का सबसे बड़ा पड़ाव आया जब फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उन्होंने फिल्म फेयर, स्क्रीन और क्रिटिक्स अवार्ड्स इतने जीते हैं कि उतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं बताते बताते ही थक जाऊंगी। तो इससे यही साबित होता है कि आपके काम में अगर बात है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं।

वैसे बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों में काम करने वाले और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले जो हमारे विकी कौशल हैं, आपको पता है उन्हें डर भी लगता है और उन्हें डर लगता है पानी से। जी हाँ, जबकि बहुत सी फिल्मों में उन्होंने पानी के सीन दिए हैं और ऐसे ऐसे सीन दिए हैं कि मतलब आपका जो रूम रूम है वो कांप जाता है, लेकिन हकीकत में उन्हें एक्वाफोबिया है, पर पर्दे पर वो हर डर को मात दे देते हैं। तो सच में इंसान की शख्सियत होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए कि आपका डर भी ना आपसे डर जाए।

दोस्तों, विकी कौशल के करियर से जुड़ी, उनके अवार्ड सेक्शन से जुड़ी सारी बातें हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब थोड़ी सी बात उनके दिल के मामलों की कर ली जाए। विकी कौशल की पर्सनल लाइफ भी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। जी हाँ, हम किसी को चाहते हैं और वो हमें मिल जाए बिना किसी जद्दोजहद, बिना किसी मेहनत के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये हुआ विकी कौशल के साथ। वो फैन थे कटरीना कैफ, बहुत बड़े फैन थे, लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कटरीना कैफ, जिनको वो मनी मन इतना पसंद करते हैं, वो कभी उनकी ज़िंदगी में भी आ जाएंगी। और एक टॉक शो में जब कटरीना से पूछा गया था, उस टाइम विकी कौशल भी साथ में बैठे हुए थे, कटरीना से ये बात पूछा गया था कि कटरीना आप बताइए कि पर्दे पर आपकी जोड़ी किसके साथ अच्छी लगेगी, तो कटरीना ने छूटते ही बोला था, मेरी जोड़ी तो विकी के साथ बहुत अच्छी लगेगी। उसे सुनकर जो विकी कौशल थे वो खुशी से पागल हो गए थे, बेहोश होने का नाटक तक करने लगे थे। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल, उन्हें पता ही नहीं था कि जो वो कह रही हैं कि पर्दे पर जोड़ी अच्छी लगेगी, रियल लाइफ में उनकी जोड़ी बन गई। साल 2021 में दिसंबर का वो महीना था, राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट में दोनों ने एक प्राइवेट और रॉयल वेडिंग की। आज दोनों बॉलीवुड के सबसे प्यारे और सक्सेसफुल कपल्स में से एक हैं, साथ ही एक प्यारे से बेटे के माता पिता भी हैं।

दोस्तों ये तो थी विकी कौशल की कहानी, उनके संघर्ष से लेकर यानी कि अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक पहुंचने की कहानी, ऊंचाई तक पहुंचने की कहानी, अपने मंजिल तक पहुंचने की कहानी। तो उनकी कहानी से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि आपके पास कुछ ना भी हो लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है, संघर्ष करने की ताकत है तो फिर कोई आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। और ये साबित किया है विकी कौशल ने, जहां उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने और आज वो बेस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो हर तरीके के रोल में ढलने को तैयार हैं और आगे भी उनकी बहुत सारी फिल्में हम सब के सामने आने वाली हैं। फिलहाल आप सबके जाते जाते मेल ले लेते हैं जो आप कार्यक्रम को सुन रहे थे। ये हमारे साथ नलेश्वर नगर नरवेल से वी एस नभानकर, निर्मला नभानकर, विशाल नभाकर जुड़े हुए हैं, साथी जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुलाल सिंह, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, रवि कुमार राहुल जुड़े हैं अम्बाला से। इसके साथ ही हमारे साथ जो कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं साथी वो हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से। उसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, गांव परासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, ये कलाकार कार्यक्रम सुन रहे हैं और विकी कौशल की जानकारी इनको अच्छी लगी। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन समय बहुत कम रह गया है, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम को एंजॉय किया, पसंद किया। और मुझे ये उम्मीद है कि विकी कौशल पर जो भी मैंने आपको जानकारियां दी उसे सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए जाते जाते एक और खूबसूरत सा गीत है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन में दोपहर के 3 बज रहे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर,

0: आकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
1: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी। श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर। श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
1: जी,
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
1: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी। बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी,
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी। एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी।
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?

0: and Lingdo. Artist, Shalini Singh. Child singer, Angel. Child artists, Navya, Soham, Lavish, Vanya, and Riddhi. Music composition and guidance, Ajit Horo. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Meenakshi Kukreti. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. Dear friends, if you want to give your feedback on our programs, you are most welcome. Contact us on our toll-free number 8800440559. We may be contacted as well on our email address. Our email ID is audio@ciet.nic.in. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम दिक्रो और अब सुनते हैं कार्यक्रम एक पौधा राजू का।
1: इस कार्यक्रम में एक बच्चे के बारे में मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि कैसे उसने एक पौधा लगाया, उसकी देखभाल की और अपने मित्रों को भी उसने पौधा लगाने के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी।

0: एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: राजू स्कूल से आ गए तुम?
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।

0: ठीक हो गया?
1: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
0: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
1: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ
0: देखभाल, वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
4: दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
2: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
2: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं उर्दू मजलिस।

0: आना स्मार्टफोन, तो लीजिए समाप्त कीजिए।
1: गांव के पूरब में रमजान चचा का मकान पुराने तर्ज का था। घर में मियाँ बीवी दो ही प्राणी थे। दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे जो अपनी अपनी ससुराल में थीं। इकलौते बेटे कामरान अब पूरी तरह से मुंबई के हो चुके थे। 4 साल से गांव नहीं आए थे या नहीं आ सके थे। रमज़ान चचा की उम्र तकरीबन 65 साल होगी, लेकिन लगते 75 के थे। प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड टीचर थे, आदत से मजबूर। सामने वाले को अक्सर प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म समझते और किसी भी महफिल को अपना क्लासरूम। नई नस्ल से खुदा वास्ते का बैर था। हर पुरानी बात और पुरानी रिवायत उन्हें पसंद थी। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट को हर खुराफात की जड़ समझते थे। आदमी ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन गांव के अक्सर लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रमज़ान चाह कहीं भी भक से मुंह पर सच बोल देते थे। जवान तो जवान, गांव के बूढ़े भी उनसे ज़रा दूरी बनाकर रखते थे। वो हर जुमा को नमाज के बाद मस्जिद के बाहर बैठकर गांव वालों में किसी ना किसी को पकड़ लेते और नसीहतें करते। उनकी एक ख़ास बात यह थी कि वो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन को हर वक्त बुरा भला कहते। ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये सब नई नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे ज़माने में लोग एक दूसरे से मिलकर बात करते थे, अब बस स्क्रीनों में घुसे रहते हैं। वो अक्सर गांव के नौजवानों को कोसते कि ये सोशल मीडिया उनकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। इस स्मार्टफोन में खुदा जाने क्या क्या बलाएं भरी हुई हैं। हालांकि जब दोनों बेटियां अपनी अपनी ससुराल चली गईं और बेटे मुंबई के हो रहे, तो बहालत मजबूरी रमज़ान चा को भी एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पड़ा। लेकिन लिया अपनी पसंद से पुराने मॉडल का छोटा वाला फ़ोन। अब फ़ोन कुर्ते की जेब में रखकर चलते और हसब ज़रूरत फ़ोन पर बात कर लिया करते। लेकिन अब भी स्मार्टफोन के बहुत ख़िलाफ़ थे। इस बात को शिद्दत से महसूस करते थे और कहा करते थे कि स्मार्टफोन शैतान का घर है। सोशल मीडिया को अपना जानी दुश्मन समझते थे। गांव के किन किन लोगों के बच्चे को सोशल मीडिया ने बिगाड़ दिया है, इसकी फहरिस्त थी उनके पास। रमज़ान चा 5 वक्त के नमाज मस्जिद में अदा करते थे। अच्छी खासी खेती की ज़मीन थी, भरा पूरा अनाज पैदा होता था। घर के पीछे खाली पड़ी 2 कट्ठा ज़मीन में भांत भांत की सब्जियां उगाते थे। दरवाजे पर नीम के पेड़ के उस तरफ जामुन, पपीता और अमरूद के कुछ दरख्त लगा रखे थे। घर में 2 बूढ़े, खुद और बीवी, ये अमरूद और पपीते भला कौन खाता। बस इसी बात की तकलीफ थी उन्हें। बेटियां अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए मैके आती तो घर में रौनक आ जाती, खाली मकान घर लगने लगता। लेकिन बेटियां भला कितने दिन रुकती, 2-4 दिन बाद फिर वही तन्हाई। बेटे कामरान ने IIM अहमदाबाद से MBA किया था। मुंबई में बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन उस दिन कयामत आ गई जब एक दूर के रिश्तेदार ने बताया कि कामरान ने मुंबई में एक मराठी लड़की से शादी कर ली है। कामरान की अम्मी अमीना बेगम ने कई बार रमज़ान चा को समझाने की कोशिश की कि चलें मुंबई चलते हैं, बेटे बहू से मिल आते हैं, लेकिन रमज़ान चा हर बार बात को टाल जाते। उधर मुंबई में कामरान को भी कुछ दूर के रिश्तेदार बताते रहते थे कि तुम्हारे अब्बा बहुत नाराज़ हैं। कामरान ने 3-4 मरतबा फ़ोन किया, लेकिन रमज़ान चा ने जानबूझकर फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर तो रिश्ते और मोहब्बत की चादर पर गलतफहमी की धूल परत दर परत जमती चली गई। कामरान शहर में एक अच्छी नौकरी करता था। उसकी बीवी रज़िया एक घरेलू खातून थी जो अपने बच्चों की परवरिश में मसरूफ रहती। लेकिन शहर के तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने कामरान को अपने माँ बाप से दूर कर दिया था। कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती, लेकिन अमीना बीबी की आवाज़ में छुपी वो उदासी उसके दिल को छू जाती और वो उसे नज़रअंदाज कर देता। बरसों यही सिलसिला चलता रहा। माँ बाप गाँव में अपने बेटे और पोते पोतियों को देखने के लिए तरसते रहे और कामरान शहर में अपनी मसरूफियात में गुम रहा। एक रात जब कामरान थकन से चूर अपने फ्लैट में लेटा, यूं ही सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नज़र अपने पुराने दोस्त फैसल की एक पोस्ट पर पड़ी। फैसल ने अपने वालिद की एक तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों भरे चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था। नीचे फैसल ने लिखा था, आज बाबा की तस्वीर देखकर दिल भर आया। वो हर सुबह हमारे लिए दुआ करते थे। उनकी हर बात में हमारे लिए मोहब्बत छिपी है। अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं तो उनकी कदर करें। वक्त तेज़ी से गुजर जाता है और फिर बस पछतावा रह जाता है। ये पोस्ट पढ़कर कामरान के दिल में

0: तूफान सा उठा। उसने फ़ोन एक तरफ रखा और आंखें बंद कर लीं। उसके जहन में अपने वालिद की तस्वीर उभरी, वो सफ़ेद दाढ़ी, वो हल्की सी मुस्कुराहट और अमीना बीबी की नर्म आवाज़ जो हर फ़ोन कॉल पर पूछती थी, बेटा कब आओगे। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वो पैसों की दौड़ में अपने माँ बाप को भूल गया था। बहुत कोशिश के बाद भी उस रात वो सो ना सका। सुबह उठते ही उसने रज़िया से बात की, रज़िया हमें गांव जाना चाहिए, माँ बाबा हमारे इंतज़ार में हैं, मैंने उन्हें बहुत इंतज़ार करवाया। रज़िया ने अपने शौहर कामरान की आंखों में गहरी उदासी देखकर फौरन हामी भर ली। अगले हफ्ते वो छुट्टी लेकर बच्चों को साथ लेकर गांव रवाना हो गया। गांव की वो पगडंडी जो कभी कामरान के बचपन की दौड़ का हिस्सा थी, अब उसके कदमों तले धूल उड़ा रही थी। शहर की चमक दमक, नौकरी की दौड़ और पैसों की हवस ने उसे बरसों इस गांव से दूर रखा था, लेकिन आज वो वापस आया था, अपने माँ बाप के पास, अपने घर, अपनी जड़ों की तरफ। उसके साथ उसकी बीवी रज़िया और दो बच्चे अदनान और सैमा भी थे। गाँव का वो छोटा सा घर, नीम का दरख्त और मिट्टी की दीवारें वैसी ही थीं जैसे बरसों पहले छोड़कर गया था, लेकिन उस घर के मकीन अमीना बीबी और मोहम्मद रमज़ान अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखों में बरसों की उदासी और इंतज़ार की छाप थी। जब वो गांव पहुंचा तो अमीना बीबी दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उन्हें पहले से एहसास हो गया हो। उनकी आंखें छलक पड़ी जब उन्होंने कामरान को देखा। वो दौड़कर उसके पास आई और उसे सीने से लगा लिया। बेटा तू आ गया, उनकी आवाज़ में खुशी और उदासी का इम्तिजाज था। मोहम्मद रमज़ान अंदर से आए, उनकी कमज़ोर चाल और सफ़ेद बालों ने कामरान का दिल पिघला दिया। बाबा, उसने उनके हाथ चूमे और माफ़ी मांगी, मैं खुदगर्जी में डूब कर आप दोनों को भूल गया था। मोहम्मद रमज़ान ने खामोशी से उसका सर सहलाया और कहा, बेटा बस तू आ गया, ये काफ़ी है। घर में रौनक लौट आई। अदनान और सायमा अपने दादा दादी से लिपट गए। अमीना बीबी ने रज़िया के साथ मिलकर खाना बनाया और मोहम्मद रमज़ान ने बच्चों को गांव की कहानियां सुनाई। लेकिन मोहम्मद रमज़ान के दिल में एक सवाल उठ रहा था। वो समझ ना पाए कि अचानक उनके बेटे के अंदर ये तब्दीली कैसे आई। बरसों से वो शहर में मसरूफ़ था, फिर अचानक क्यों लौट आया। हालांकि आज मोहम्मद रमज़ान अपने बेटे को देखकर खुशी से निहाल थे, बरसों बाद घर में रौनक लौटी थी। लेकिन वो सवाल उन्हें परेशान कर रहा था कि बेटे को अचानक गांव की याद आई कैसे। एक शाम जब सब सहन में बैठे चाय पी रहे थे, मोहम्मद रमज़ान ने हिम्मत करके पूछ लिया, बेटा ये बता, अचानक तुझे हमारी याद कैसे आई? क्या बात हुई कि तू अपने बूढ़े माँ बाप को देखने चला आया? कामरान ने मुस्कुराकर फ़ोन निकाला और फैसल की वो सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई। उसने पूरी बात बताई कि किस तरह फैसल की पोस्ट ने उसके दिल को झंझोड़ा और उसे गांव आने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर मोहम्मद रमज़ान खामोश हो गए। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उभर आए। वो बरसों से सोशल मीडिया को कोसते रहे, उसे वक्त का ज़ाया कहते रहे, लेकिन आज उसी सोशल मीडिया ने उनके बेटे को उनके पास वापस ले आने का काम किया। उन्होंने सर झुकाया और कहा, बेटा मैंने हमेशा इस स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को बुरा कहा, लेकिन आज इसी ने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी की। उनकी आंखों में नमी थी और वो अपनी बातों पर नदामत महसूस कर रहे थे। 15 दिन घर पर गुजार कर जब कामरान मुंबई वापस जा रहा था, तो रमज़ान जान ने उससे धीरे से कहा कि अपना वाला स्मार्टफोन मुझे देते जाओ, तुम मुंबई में दूसरा ख़रीद लेना, और हाँ इसमें सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बताते जाओ।
1: सामीन, अभी आप मोहतरमा कुदसिया नासिर से उनका तख्लीक करदा अफसाना स्मार्टफोन समाप्त कर रहे थे। देखा उन्होंने इस अफसाने में किस तरह से मौजूदा दौर के सूरत हाल को बयान किया है। तो आइए सामीन, आपको अब हम लिए चलते हैं बज़्म मौसिकी में और आपको सुनवाते हैं ग़ुलाम अली की आवाज़ में हसत मोहानी का।

0: वाकई इस गज़ल को सुनकर आप भी अपने उन यादों में ज़रूर खो गए होंगे, जिन यादों को आप सोचते हैं और सोच करके मुस्कुराते हैं, ख्याल करते हैं। तो आइए सामईन, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं और आखिर में नवाए शायर के तहत लीजिए समात कीजिए गुलजार देहलवी का कलाम। सामईन, आपकी फरमाइश पर हम गुलजार देहलवी का कलाम पेश कर रहे हैं, ये आप पहले भी सुन चुके हैं खुद उनकी आवाज में, तो लीजिए समात कीजिए।
1: फला है आदमियत में सऊबत सह के मर जाना, फला है आदमियत में सऊबत सह के मर जाना, यही है काम कर जाना, यही है नाम कर जाना, यही है काम कर जाना, यही है नाम कर जाना। जहाँ इंसानियत वहशत के हाथों ज़बह होती हो, जहाँ इंसानियत वहशत के हाथों ज़बह होती हो, वहाँ तजलील है जीना, वहाँ बेहतर है मर जाना, वहाँ तजलील है जीना, वहाँ बेहतर है मर जाना। करता हूँ फरेबे औजो पस्ती हेच है उसकी निगाहों में, फरेबे औजो पस्ती हेच है उसकी निगाहों में, कि जिसने अरसए हस्ती का ये जेरो ज़बर जाना, कि जिसने अरसए हस्ती का ये जेरो ज़बर जाना। लदा फरमाए कि मुअस्सर हादसे अर्ज़ो समा के मुझ पे क्या होते, मुअस्सर हादसे अर्ज़ो समा के मुझ पे क्या होते, मेरी फितरत ने सीखा ही नहीं गर्दिश से डर जाना, मुअस्सर हादसे अर्ज़ो समा के मुझ पे क्या होते, मेरी फितरत ने सीखा ही नहीं गर्दिश से डर जाना। हमारी सादा लोही थी खुदा बख्शे के खुश फहमी, हमारी सादा लोही थी खुदा बख्शे के खुश फहमी, कि हर इंसान की सूरत को मा फाउकुल बशर जाना, कि हर इंसान की सूरत को मा फाउकुल बशर जाना। चमन में फिर ख़ास तौर पर मुलादा फरमाएं, चमन में किस कदर सहमे हुए हैं आशियां वाले, चमन में किस कदर सहमे हुए हैं आशियां वाले, कि जुगनू की चमक को साजिशे बरको शरर जाना, चमन में किस कदर सहमे हुए हैं आशियां वाले, कि जुगनू की चमक को साजिशे बरको शरर जाना। हमें खारे वतन गुलजार प्यारे हैं गुले तर से, हमें खारे वतन गुलजार प्यारे हैं गुले तर से, कि हमने खारो खस को हासिले बरगो शजर जाना, कि हमने खारो खस को हासिले बरगो शजर जाना। फलाहे आदमियत में सऊबत सह के मर जाना, यही है काम कर जाना, यही है नाम कर जाना। एक और पहले गज़ल के चंद शेर हाजिर करता हूँ। गुंजा दहन जो साए कहे साए कबारे चमन हुआ, गुंजा दहन जो साए कबारे चमन हुआ, मेरा हर एक जख्म जिगर खंदा जन हुआ, मेरा हर एक जख्म जिगर खंदा जन हुआ। गर्दो गुबारे राह ने रख ली किसी की लाज, गर्दो गुबारे राह ने रख ली किसी की लाज, कहता है कौन तेरा गदा बेकफन हुआ, कहता है कौन तेरा गदा बेकफन हुआ। गर्दो गुबारे राह ने रख ली किसी की लाज, कहता है कौन तेरा गदा बेकफन हुआ। नीची निगाह नास से छुप छुप के देखना, नीची निगाह नास से छुप छुप के देखना, शूखी हुई अदा हुई या बांकपन हुआ, शूखी हुई अदा हुई या बांकपन हुआ। मशातगी के फन से बढ़ी दुख्त रज की शान, मशातगी के फन से बढ़ी दुख्त रज की शान, बादा वही अजीज हुआ जो कोहन हुआ, बादा वही अजीज हुआ जो कोहन हुआ। करता हूँ यूं अजनबी की तरह से जीना पड़ा मुझे, यूं अजनबी की तरह से जीना पड़ा मुझे, अपने वतन में जैसे गरीबुल वतन हुआ, अपने वतन में जैसे गरीबुल वतन हुआ। मरने के बाद मेरे लिए।

इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को इस उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। नमस्कार विदुषी।
1: नमस्कार।
0: तो आज हम चर्चा करेंगे आईपीएल पर, जहां राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से पराजित कर दिया और हम इस मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 93 रनों की एक ऐसी आतिशी पारी खेली जिसे जो क्रिकेट प्रेमी दर्शक है वो लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी लगातार कमाल कर रहे हैं और उनके कमाल का ये आलम है कि वो ऑरेंज कैप भी हासिल कर चुके हैं। कल उन्होंने 38 गेंदों पर 93 रन की जो पारी खेली उसमें 7 चौके और 10 शानदार छक्के शामिल थे। इसके अलावा बात मलेशिया मास्टर बैडमिंटन की होगी, जहां महिला एकल में अश्मिता चालिहा और मालविका बंसौर ने जीत के साथ शुरुआत की है। हालांकि पुरुष एकल में लक्ष्य सेन के बाद एचएस प्रणय को हार का सामना करना पड़ा, जबकि किरण जॉर्ज को मैच में चोटिल होने के कारण रिटायर होना पड़ा। इसके अलावा युगल में हरिहरन और एमआर अर्जुन ने भी जीत के साथ आगे कदम बढ़ाए हैं। थाईलैंड में सेपक टेकरा विश्व कप चल रहा है और वहां भारत ने क्वार्टन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। रेगू टीम स्पर्धा में भी मुकाबले शुरू हो चुके हैं। वहां हालांकि भारत को पहले दौर में मलेशिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी भारतीय टीम के पास वापसी का मौका है। कल म्यांमार से मुकाबला है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा बात विदुषी अन्य जो खेल स्पर्धाओं पे और खिलाड़ियों पे करेंगे तो क्या बताना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: जी हाँ नवीन जी, आज चर्चा के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हम बात करेंगे टेनिस जगत में चल रही फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरिस की, जहां हमारी करमन कौर टंडी को क्वालिफाइंग राउंड में हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ साथ चर्चा स्क्वॉश की भी होगी, जहां आयरिश ओपन के मुकाबले जोरों से चल रहे हैं, पर खबर ये है कि राउंड 1 में भारतीय खिलाड़ी तन्वी खन्ना बाहर हो गई हैं। अच्छी खबर हम आपके लिए लाए हैं हॉकी के जगत से, जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही अंडर 18 सीरीज में हमारी महिला टीम ने आखिरी मैच को 4-1 से जीत लिया है। साथ साथ बात करेंगे चेस की भी, जहां सुपर बेट चेस क्लासिक चल रही है रोमानिया में, जहां नजरें टिकी होंगी आज

0: होने वाले राउंड सिक्स पे, जिसमें होंगे भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा।
1: जी बिल्कुल, बात क्रिकेट की करें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने घर में जो दो टेस्ट मैचों की सीरीज थी वहां 2-0 से बुरी तरह क्लीन स्वीप कर दिया है पाकिस्तान का, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार अपने घर के अंदर टेस्ट श्रृंखला में इतनी बुरी शिकस्त दी है, और उसका फायदा उसे ICC टेस्ट विश्व चैंपियनशिप में भी मिला है। वो 5वें स्थान पर पहुंच गई है। जी हाँ, ये सिग्नेचर ट्यून IPL की है, और IPL में जो धूम धड़ाका चल रहा है वहाँ बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया कल के मुकाबले में। मिचेल मार्श की बात हो या बात हो 15 साल के करिश्माई वैभव सूर्यवंशी की, विदुषी क्या बताना चाहेंगे, वैभव ने जो कल पारी खेली है वो कितनी यादगार थी और मुकाबला कैसा रहा, क्योंकि राजस्थान के लिए ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण था।
0: जी हाँ बिल्कुल, IPL 2026 में अब यूं कहें तो राजस्थान रॉयल्स ने की है एक दमदार वापसी। इस मैच को हम याद करेंगे वैभव सूर्यवंशी का तूफान। अगर इस मैच में बात करें तो इसी के कारण अब राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखते हुए लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 7 विकेट से हरा कर शानदार जीत दर्ज की। जयपुर में खेले गए इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में सबसे बड़ा आकर्षण रहे सिर्फ 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो बात अगर मैच शुरू कैसे हुआ उसकी करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, जो कि विशाल स्कोर माना जाता है। टीम के लिए मिचेल मार्श ने शानदार 96 रन बनाए, जबकि जॉश इंग्लिस ने तेज तर्रार 60 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 109 रन जोड़कर राजस्थान के गेंदबाजों पर बहुत दबाव बनाए रखा। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत ने भी 35 रन जोड़े और लखनऊ ने राजस्थान के सामने 221 रन का लक्ष्य रखा। लेकिन जवाब में राजस्थान ने जो किया है वो तो हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि उनके शुरुआत से ही इरादे अलग दिखाई दिए। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर तूफानी 93 रन ठोके। उनकी पारी में 5 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। हालांकि वे अपने शतक से सिर्फ 7 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी यह पारी इस सीजन की सबसे यादगार पारियों में से मानी जा रही है। वैभव अपने IPL 2026 की ऑरेंज कैप अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने इस सीजन में अब तक सिर्फ 13 पारियों में 579 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट अविश्वसनीय 236.33 रहा है। इतना ही नहीं, वैभव इस सीजन में 1 शतक, 3 अर्धशतक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग 53 छक्के लगा चुके हैं। वे IPL इतिहास के इस सीजन में 500 रन बनाने वाले सबसे पहले युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। साथ ही वे IPL के एक ही सीजन में 50 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। इतनी कम उम्र में उनका इतना आत्मविश्वास, शॉट चयन, बड़े मंच पर खेलने का अंदाज क्रिकेट विशेषज्ञों को भी हैरान कर रहा है। तो आइए जानते हैं अपने इस प्रदर्शन पे खुद वैभव क्या कहना चाहते हैं और उसी के साथ साथ उनके कप्तान ने क्या कहा।
2: ये सर वही माइंडसेट था कि कभी भी मैं 2-3 मार सकता हूँ एक ओवर में छक्के, तो मैं थोड़ा लंबा टाइम ले सकता हूँ, ज्यादा रश ज्यादा नहीं सोचता, बस यही सोचता हूँ कि अभी सब स्टार्ट है। अगर मेरा करियर लंबा रहा, मैं बहुत टाइम तक खेला तो बहुत कुछ भी लोग बोलेंगे, बस मेरा फोकस गेम पे रहे और मैं अपना जो जर्नी है, मैं तो बस हर मैच में कुछ नया कर देता हूँ। मैं ऐसा कुछ लास्ट मैच में भी जो मैंने सेलिब्रेशन किया था उसका भी कुछ मीनिंग नहीं था, बस मैं नया नया कुछ कुछ ट्राई करते रहता हूँ हर मैच में। अच्छा कुछ नहीं सर, बस हमारा यही फोकस है कि हम लोग एंजॉय करें नेक्स्ट गेम को भी, ऑफ द फील्ड ज़्यादा फोकस ना करने को देखो और सब लोग गेम पे फोकस करें और इन्जॉय करके खेले, जो अभी तक हम लोग पूरे टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं टूर्नामेंट में, बट अपना फोकस है अच्छा क्रिकेट खेलना और गेम जीतना बस।
1: वैभव की शानदार पारी के बारे में नियमित कप्तान रियान पराग कहते हैं,
3: आई थिंक दिस इज हिज बेस्ट इनिंग्स। आई वाज इन द डगआउट थिंकिंग द सेम थिंग व्हेन ही वाज 5 of 10, 5 of 11, समथिंग लाइक दैट। देयर इज ऑलवेज टू वेज अ बैट्समैन कैन यू नो गो अबाउट इट। वन इज टेक इट अपॉन हिमसेल्फ एंड लेट हिज ईगो टेक ओवर एंड से व्हाई एम आई नॉट एबल टू हिट दिस, और व्हाई एम आई नॉट रिकवरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट, एंड देन ही जस्ट ब्लाइंडली स्लॉग्स इट। But it was really fun and curious to see that Weber being 15, He took his time. He played that first big shot of my

0: Triumph overcovers, which really gave me a sense of satisfaction and understanding that, okay, he is small, but then he has a larger understanding of the game, and hence he scored those runs. I feel a lot of senior batsmen, and even me sometimes, if I'm in that situation, I try and like fight my way through it and not go with it with a calm mindset. But what he did was commendable, and I feel in the last 2 years, that's his best innings that I've seen. 220 चेज करे हमने किया, बट मुझे लगता है कि हम उन्हें रोक सकते थे. एटलीस्ट 20 से 25 रन हम रोक सकते थे अगर हम और थोड़ा स्मार्ट होकर बॉल डालते या फिर विकेट को रीड करते हम जल्दी. आई थिंक आगे की तैयारी ये होगी कि उस एरियाज में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम बैटिंग में और जल्दी फिनिश कर सकते हैं. रही बात इम्पैक्ट की, आई थिंक हैमस्ट्रिंग इंजरी थी मुझे लास्ट DC के साथ मैच में, फिर रिकवर हुआ, अभी वापस लास्ट गेम में हुआ फील्डिंग बैटिंग के टाइम, तो इसीलिए इम्पैक्ट नहीं खेला. आई थिंक विन वॉज ड्यू टू कम. आई फील वी प्लेड गुड क्रिकेट, बट देन वी नॉट प्लेड कम्प्लीट क्रिकेट. वी प्लेड गुड क्रिकेट इन लाइक इट्स इन बिट्स ऑफ द होल गेम ऑफ द होल 40 ओवर्स. सो आई फील द वे वी प्ले टुडे, द वे वी चेज एस्पेशली, दैट वॉज रियली कमेंडेबल, रियली नाइस. बट लाइक आई सेड, देयर इज अ फ्यू मोर थिंग्स दैट वी कैन डू बेटर विद द बॉल, विद द फील्ड एज वेल. वी कैन एम्प इट अप एनर्जी वाइज एंड एग्जीक्यूशन वाइज एज वेल. सो एज फार एज द विन इज कंसर्न, इट्स फील्स रियली गुड, बट देन वी गॉट सम वर्क टू डू. ये पूरा देश क्रिकेट को बहुत प्यार करता है. हम एज प्लेयर्स हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी जाए अपना बेस्ट दे, जो भी क्राउड आए हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं, हम उनके लिए परफॉर्म करें. बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छा इक्विपमेंट, बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है हमें परफॉर्म करने के लिए. जब टीम अच्छा करती है, मेरा हमेशा ये रहता है कि हम अच्छा और कैसे कर सकते हैं. जब हम अच्छा नहीं कर रहे, उसमें हम पॉजिटिव्स मैं ढूंढता हूँ. आज जैसे कमबैक किया, ये आई थिंक लड़कों का कैरेक्टर शो करता है कि कैसे डू ऑर डाई गेम पे हमने स्टेप अप किया और ऐसी टीम को हराया. बट रही बात उस पर, एक और एक इक्वेशन है कि अगर ये हम अभी कर सकते तो हम ये हम चीज़ें पहले क्यों नहीं कर सकते थे, या फिर ऐसा कोई रीज़न नहीं होना चाहिए जो इस गेम के बाद हम वापस रिपीट ना कर पाए. तो आई फील ये गेम हो गया, बहुत अच्छा लगा जीत के. मूविंग फॉरवर्ड मुंबई के लिए अच्छा प्रिपरेशन करेंगे. क्वालिफिकेशन कितना पॉइंट्स वो सब मेरे दिमाग में है नहीं. मेरे को मुंबई जाना है और मुझे मुंबई में 2 पॉइंट चाहिए.
1: जी हाँ, अब अगर आपको पॉइंट्स टेबल की तरफ ले चलें और प्लेऑफ की तस्वीर पर नज़र डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 मैचों में 18 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है. यहीं गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने 16-16 अंकों के साथ पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है. राजस्थान की इस जीत के बाद पंजाब किंग्स अब 13 अंकों के साथ 5वें स्थान पर खिसक गई है. चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स भी 12 अंकों के साथ वहां मौजूद है, लेकिन खराब नेट रन रेट के कारण उनसे नीचे है. कोलकाता नाइट राइडर्स 11 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है और गणितीय रूप से अब भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स 13 मैचों में सिर्फ 8 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है. सबसे नीचे मुंबई इंडियंस की टीम है, जिसके 12 मैचों में 8 अंक हैं और वह भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. अब मुंबई इंडियंस की बात अगर हमने करी है तो आज होने वाले मुकाबले पर नजर डालते हैं. आज टूर्नामेंट का 65वां मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान में खेला जाएगा, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. ये मुकाबला खास तौर पर कोलकाता के लिए ही बेहद अहम है, क्योंकि टीम अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है. अगर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली ये KKR को अपनी उम्मीद जिंदा रखनी है तो उन्हें मुंबई इंडियंस के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी. जीत के साथ कोलकाता के अंक 13 हो जाएंगे और टीम अंतिम 4 में जगह बनाने की उम्मीद बनाए रखेगी. दूसरी ओर मुंबई इंडियंस पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन उनके पास मौका है बाकी टीम्स के प्लेऑफ में जाने वाली दौड़ में उनके रिजल्ट्स को इफेक्ट करने का. ऐसे में यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है. और अगर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर थोड़ी नजर डालें तो अब तक खेले गए 36 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस ने 25 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ 11 मुकाबलों में जीती है. इस सीजन दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत में भी मुंबई ने ही जीत हासिल करी थी. तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज कोलकाता अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रख पाएगी या नहीं. फिलहाल आज ये सुनते हैं कि इस मुकाबले में क्या अप्रोच लेकर जा रही है कोलकाता नाइट राइडर्स, उस पर उनके गेंदबाज अनुकूल रॉय का क्या कहना है.
2: जैसा प्लान सब टीम के साथ रहता है, जैसे हम लोग का अपना प्लान रहता है, जैसे प्लेयर लोग खेलते हैं उसके हिसाब से अगर फिर करेंगे तो फिर मुश्किल में आएंगे. बट जैसे हम लोग का जो प्लान रहता है नॉर्मली कि राइटी को कैसे डालना है, लेफ्टी को कैसे डालना है, सभी बॉलर्स का क्या प्लान है, उसका किधर स्ट्रेंथ जोन है, किधर वीक है, सबका स्ट्रेंथ वीकनेस होता है. तो उसमें ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उस पर ज़्यादातर ध्यान दें और बॉलिंग करें उससे.
3: जी हाँ बिल्कुल विदुषी, बात क्रिकेट की ही जारी रखते हैं और बात करते हैं भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो टेस्ट चैंपियनशिप में जो मुकाबला ये टेस्ट सीरीज खेली गई वहाँ उसका, जहाँ बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में पराजित कर दिया और उसका फ़ायदा उसे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में मिला है और बांग्लादेश ने ये मुकाबला दूसरे टेस्ट को 78 रन से जीता है और दो मैचों की सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप उसने की है। पहला टेस्ट मीरपुर में 104 रन के अंतर से जीता था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो चक्र चल रहा है अब बांग्लादेश 5वें स्थान पर आ गया है। बांग्लादेश के 4 टेस्ट मैचों में 2 जीत 1 हार और 1 ड्रॉ से 58.33% अंक हैं, जबकि भारतीय टीम के 9 टेस्ट मैचों में 4 जीत 4 हार और 1 ड्रॉ से 48.15 अंक हैं। तो ये विश्व चैंपियनशिप जो चल रही है वहाँ भारतीय टीम ने अभी तक इस साल कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। भारत 2 बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँचा है और अब अगर भारत के मुकाबलों की बात की जाए तो 6 जून से पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेलना है। इसके अलावा साल के अंत में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का दौरा है जहाँ 2-2 टेस्ट मैच में हिस्सा लेना है। इसके अलावा भारत को टेस्ट श्रृंखला में पिछले साल की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से और इंग्लैंड से भी 2 मैच भारतीय टीम ने गंवाए थे। 2027 में अगले साल की शुरुआत में भारत को ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करनी है। तो ये सभी मुकाबले भारत के लिए काफ़ी अहम होंगे और भारतीय टीम कोशिश करेगी कि वो पहले अफगानिस्तान के खिलाफ, इसके बाद श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखे और जो टेस्ट चैंपियनशिप में उसका 1-2 बार फाइनलिस्ट है उसका जो रुतबा है वो उसको भी मेंटेन करे। बिल्कुल, बात अब क्रिकेट से करते हैं बैडमिंटन की और क्वालालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन

0: है, प्रतिभाओं को सामने लाने का आपने काम किया है, तो इसमें आकाशवाणी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है?
1: निश्चित तौर से जब वो रेडियो पे आवाज सुनते हैं हमारी, तो उनके अंदर एक चीज होती है कि हम किसी भी तरह से हम रेडियो पर जाएं जिससे हम एक साथ पूरे देश में सुने जाएं।
0: आपका भी वही ख्याल आया होगा?
1: वो भी ख्याल मेरे अंदर आया कि जब मैं गाता हूँ मंचों पे, तो वहाँ 1000 आदमी होता है, 2000 आदमी होता है। रेडियो केवल एक ऐसा साधन है कि जो एक समय में देश के करोड़ों लोग एक साथ बैठ करके मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। इसलिए सब युवाओं का भी अधिकतर ख्वाब रहता है कि हम किसी ना किसी तरह से रेडियो पर जाएं।
0: ब्रह्मपाल जी, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से और उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान कितना महत्व रखता है?
1: ये सम्मान मुझे नहीं दिया गया, ये लोक कला और संस्कृति को दिया गया है
0: जी।
1: और जिस लोक कला संस्कृति को मैंने रेडियो के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाने का कार्य किया है।
0: क्योंकि आप 32 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं।
1: जी जी, मैं 42 साल से मैं रेडियो की सेवा कर रहा हूँ। और सामाजिक सरोकार की जहां तक बात है, जो हमारे उपदेश और संदेश होते हैं या जन जागरण के गीत होते हैं, वो मैं रेडियो के माध्यम से भी गाता रहता हूँ। आपके रेडियो पे ही गाए हुए गीत को, उस गीत को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे वो मैंने नारी शक्ति और महिला शिक्षा के ऊपर गीत गाया था। इस समय मेरे याद नहीं है पूरा गीत,
0: फिर भी एक लाइन तो होगी, जरा सा गुनगुनाइए।
1: अरे लड़की है तो दुनिया है, सबको समझाए भारत में नारी शिक्षा महत्व तो बड़ा है, सबे बताएं भारत में, इस तरह का गीत था वो।
0: और ब्रह्मपाल जी, आकाशवाणी ने कई विलुप्त होती जो लोक संस्कृति है उनको संरक्षित करने का काम किया, इससे आप नजरिए से देखते हैं क्या कहते हैं?
1: निश्चित तौर से हमारी रागनी भी खत्म हो जाती है अगर रेडियो से प्रसारित नहीं होती, तो हमारी खड़ी बोली की रागनी, होली गायन विधा, भजन विधा और संस्कार गीत, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों ने हमें दी है हर क्षेत्र में, हर विधा में, वो आपने संजो करके रखा है, ये रेडियो ने ही काम किया है सबसे बड़ा।
0: ब्रह्मपाल जी, आज डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आकाशवाणी की प्रासंगिकता को आप कैसे देखते हैं?
1: मैं निश्चित तौर से सोशल मीडिया कितना भी हो गया है, कितने ही मीडिया चैनल्स हैं, जितना आकाशवाणी का दायरा है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया दूर दराज के क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया है, वहां केवल पहुंची है तो केवल आकाशवाणी पहुंची है।
0: आकाशवाणी ही ये सब कुछ प्रोवाइड करा सकती है, आकाशवाणी ही सबको सामने ला सकती है। तो आकाशवाणी, जैसे कि गांव और शहर की बात कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो शहर में आ जाते हैं, वहां की संस्कृति को, चाहे कि लोक विधा हो, लोक गायन हो, चाहे भजन हो, इन सब चीजों को लगभग कुछ लोगों की जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाते हैं।
1: निश्चित तौर से आज हमारा युवा अपनी पौराणिक संस्कृति की तरफ, सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ा है, अपने संस्कारों की तरफ बढ़ा है निश्चित तौर से। और ये मैं रेडियो की भूमिका, आप शहर में हो या गांव में हो, आज भी शहर से हमारी पीढ़ी के लोग हैं वो रेडियो से इन गीतों को सुनते हैं, और जो उनको सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हो पाते, उनकी फरमाइश कर करके, लेटर लिख लिख के, आप तो टेलीफोन का कार्यक्रम भी आपने चला दिया है
0: जी।
1: जितनी गांव देहात से आपके पास निवेदन आते हैं, इतने ही निवेदन आपके शहर से भी आते हैं
0: जी। निवेदन की बात है तो जैसे कि आजकल तो फोन इन प्रोग्राम का भी जमाना आ गया है, तो आपके समय में निवेदन किस प्रकार से आते थे?
1: उस दौर में लेटर आते थे और फिर पत्रों का जवाब आपके माध्यम से दिया जाता था
0: जी।
1: और एक चीज मैं यहाँ और भी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय टेलीफोन के साधन नहीं थे, लोग पत्र लिखते थे और लगातार लिखते रहते थे जब तक उनका नाम नहीं बोला, क्योंकि यहाँ से नाम भी बोला जाता था।
0: आज भी बोला
1: जिस तरह से गायक अच्छे हैं, इस तरह से आपके रेडियो के श्रोता भी बहुत जबरदस्त हैं, तो जब उनका नाम बोला जाता था परिवार का, या जो नाम अपने दोस्तों को लिख कर भेजते थे, तो उनके परिवार इतने खुश होते थे हमारा नाम आया और इस गीत पे हमने फरमाइश भेजी, हमारी फरमाइश पूरी की गई
0: जी। ये तो श्रोताओं की बात हुई, लेकिन जो प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, करते रहे, जैसे कि आपने भी गायन प्रस्तुत किया हुआ है
1: जी,
0: रागिनी प्रस्तुत की है, कई गीतों को आपने अपनी आवाज दी है
1: जी,
0: तो आपके नाम की भी चिट्ठी आई होगी, तो आपको क्या महसूस हुआ?
1: हम रेगुलर हम रेडियो सुनते हैं, तो जब भी हमारा नाम आता है आज भी, तो इतनी खुशी होती है अंदर से। हमारे श्रोता फोन करके बताते हैं, साहब आपका नाम आया, आपके श्रोताओं ने आपके लिए लेटर भेजा है, वो भेजा है। और जब हमारा गीत बजता है तो जो उत्साह उस समय होता है, वही उत्साह आज भी हमें महसूस होता है, और एक प्रेरणा मिलती है कि हम अभी और गाएं
0: जी। तो युवाओं को लोक संगीत, लोक नृत्य और क्षेत्रीय भाषाओं के जोड़ने के लिए आधुनिक जो प्रस्तुति शैली है, क्या उसमें थोड़े से बदलाव करनी पड़ेगी क्या?
1: निश्चित तौर से उसमें करना भी चाहिए समय के हिसाब से। जो लोक धुन है, मानो पारंपरिक लोक धुन हमारे पास है, कुछ और धुन भी क्रिएट की गई है, उन धुनों को इस हिसाब से बनाया गया है कि उसका लोक भी खत्म ना हो और उसमें थोड़ा मनोरंजक भी हो, थोड़ी फास्ट भी हो। पहले क्योंकि गीतों में बहुत स्लो गीत हम गाते थे रागनी
0: जी,
1: आज थोड़ा सा हमने उनको फास्ट किया है,
0: जो आधुनिक जो वाद्य यंत्र है उनके साथ में कदम से कदम मिलाने, उनके ताल से ताल मिलाने,
1: आधुनिक यंत्र भी उसमें समाहित किए हैं। परंतु पौराणिक यंत्रों को के बिना हम आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो भी तो हमारी लोक शैली है। अगर हमारे पौराणिक यंत्र ही खत्म हो गए, पौराणिक विधाई खत्म हो गई, तो फिर उसका मतलब क्या रह गया
0: जी? जो पौराणिक यंत्र हैं, जो पुराने यंत्र हैं, उनके साथ में जो नए यंत्र हैं
1: जी,
0: दोनों को तालमेल बिठाना चाहिए, उस दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहिए
1: जी। बिल्कुल,
0: नया और पुराना दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तो हमारी पुरानी संस्कृति भी जीवित रहेगी, जिंदा रहेगी, और उसके अलावा जो नई शैली आ रही है उनको भी हम आगे साथ साथ लेकर के बढ़ने में भी मदद मिलेगी।
1: निश्चित तौर से, जैसे हमारे सारंगी नकारा अगर रागनी में नहीं होता है तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, उनके सपोर्ट में हम और जैसे कैसियो है, ऑर्गन्स वगैरह हैं, या अपने पैड हैं, इनको हम यूज कर लेते हैं तो उससे उस गीत का जो रस है वो बढ़ जाता है
0: जी। ब्रह्मपाल जी, हमारे रेडियो में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, आकाशवाणी में जगह जगह पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इनकी लोकप्रियता तो किस प्रकार बढ़ाई जाए?
1: निश्चित तौर से जो नए कलाकार हमारे आ रहे हैं
0: जी,
1: लोकप्रियता बढ़ाने के लिए वो भी जरूरी है। दूसरा, बीच बीच में हम महिला गीत या हमारे संस्कार गीत या हमारी लोक कथाएं वो बीच बीच हम चेंज कर करके सुनाते रहें तो उससे और लोक माधुर्य बढ़ेगा और उससे जो हमारे श्रोता हैं उनमें और भी ज्यादा जाता।
0: ब्रह्मपाल जी, वैसे हमारे तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय बोलियों में, पूरे देश में अलग अलग स्थान पे, अलग अलग जगहों पे हमारे आकाशवाणी के केंद्र उन जगहों से प्रसारित की जाती है, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम है उनमें आपके विचार से क्या लगता है कि किस प्रकार और हमारे कार्यक्रमों को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए और क्या करना चाहिए?
1: हाँ, इसमें मेरा एक सुझाव है कि यहाँ तो कलाकार आते ही आते हैं, अगर हमारी आकाशवाणी गांव देहात में जा करके लोगों के बीच में, जिससे लोगों की सहभागिता भी स्पष्ट हो, तो ग्रामीण अंचल की या शहरी अंचल की उनकी जो लोकप्रियता है या उनकी आकर्षण है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और निश्चित तौर से गांव देहात के लोगों के बीच जब आकाशवाणी जाएगी, आकाशवाणी गांव में, तो उसका आनंद 10 गुना होगा और वहां के लोग रेडियो से सीधा अपने को जुड़ा महसूस करेंगे। और एक निवेदन मेरा और भी है कि रेडियो के माध्यम से अगर ग्रामीण अंचल में हमारी लोक विधाओं की प्रतियोगिता भी रखी जाए और रेडियो की तरफ से चाहे उनको कोई भी अपना एक छोटा सा गिफ्ट के रूप में उनको दिया जाए, एयर का निशान बना करके, तो निश्चित तौर से हमारे जो श्रोता हैं वो और आनंद उठा सकेंगे और ग्रामीण अंचल की भागीदारी और ज्यादा सुनिश्चित होगी।
0: ब्रह्मपाल जी, आज का दौर बिल्कुल नया दौर है
1: जी,
0: और पहले भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, पहले भी कार्यक्रमों के जो आकर्षण रहा है उस आकर्षण को बनाए रखने के लिए और भी कुछ अच्छा प्रोग्राम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
1: असल एक हमारी आकाशवाणी ने न्यूज ऑन एयर ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से रेडियो जो कम लोगों तक थी, आज पूरे हिंदुस्तान की रेडियो जगत के जितने भी कार्यक्रम हैं अपने घर बैठे किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार से इन कार्यक्रम को सुन सकते हैं।
0: ब्रह्मपाल जी, चूंकि आप एक गायक हैं और गीतकार भी हैं, यानी कि आप लेखन भी करते हैं, तो आपका ऐसा कौन सा फेवरेट गीत है जिसे आप इस वक्त अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं?
1: निश्चित तौर से देशभक्ति के गीत मेरी आवाज में ज्यादा सुने जाते हैं, तो मैं एक गीत जो आपके रेडियो के माध्यम से जाता है, अपना भारत देश महान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमें

पर ताज है अपना भारत देश महान। भारत माँ के वीरों ने जिसे अपने खून से सींचा, गांधी बोस भगत सिंह का ये पावन हिंद बगीचा।

0: विश्व गुरु का जिसके सिर पर ताज है अपना भारत देश महान।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, वक्त निकाला आपने और अपने श्रोताओं से बातचीत की, अपने अनुभव हमसे साझा किए।
2: तो अभी हमारे श्रोताओं ने सुना लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में आकाशवाणी का योगदान। ब्रह्मपाल नागर जो कि जाने माने लोक कलाकार हैं और अध्यक्ष हैं पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान नोएडा से, और इनसे बातचीत किया है कमल किशोर जी ने। तो अब हम अपने कार्यक्रम को प्रीति आगे बढ़ाते हैं।
3: बिल्कुल, और अब सुनवाते हैं हम महाभारत के किस्से से। ये रागिनी कलाकार हैं जयकिशन।

तो प्रीति, आगे हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने जो ग्रामीण हमारे श्रोता हैं या जो भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं, और वो जानकारी है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। और इस योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दिया जाता है, और ये योजना का अगर आपको लाभ उठाना है तो बहुत ही आसान सा तरीका है, या आप पीएम सूर्य घर नेशनल पोर्टल पर जाएं और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपने राज्य जिला विद्युत वितरण कंपनी और अपना अकाउंट नंबर वगैरह डालें, मोबाइल नंबर और ईमेल आप उसमें जैसे एंट्री करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से अभी वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, और सरकार की ये कोशिश है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ा जाए।

0: ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो भी इस योजना के तहत अपना जो है लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ प्रीति, हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है,
1: तो अब हमें दीजिए अनुमति कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी ग्रामीण बहनों और भाइयों को
0: राम राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार

0: ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों व बहनों को राम राम।
1: राम राम।
0: अरुणेश भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और ये जो कार्यक्रम होता है इसमें हम कृषि से जुड़ी बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में हम ये भी अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि अपना स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ही ठीक रखना चाहिए, उसके लिए आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। और क्योंकि कृषि जगत का कार्यक्रम है तो जो हमारे पशुधन हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो रीढ़ होते हैं कृषि जगत की।
1: बिल्कुल प्रीति, ये आपने सही कहा। और दरअसल आजकल बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, खास तौर पर उत्तर भारत के कई राज्यों में तो तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा है और ये तापमान लगातार बढ़ने की संभावना है, जैसा कि हमारे देश में जो मौसम विभाग है उन्होंने कहा है। इसलिए जैसे ही आपने इस बात का जिक्र किया कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के मौसम के अनुसार हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ख़ासतौर पर ग्रामीण का कार्यक्रम है अपना, किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही चाव के साथ सुनते हैं, तो एक सत्तू होता है, उस सत्तू को भी गांव में उसको घोल करके पिया जाता है, वो पेट को काफ़ी ठंडक पहुंचाता है। और स्वास्थ्य की अगर बात हुई है तो जाहिर सी बात है जो हमारा खान पान है यानी जो दाल चावल रोटी सब्जी है उनमें से जो दाल होती है ना वो बेहद ही पौष्टिक होती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि दालें केवल एक कृषि का उत्पाद नहीं है बल्कि वे भारत की पोषण सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका का आधार हैं। दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक के रूप में भारत की नीतियां लगातार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने पर केंद्रित रही हैं। बढ़ती आय और संतुलित पोषण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण दाल की मांग लगातार बढ़ रही है जिससे कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने के अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ हम अपने किसान भाई बहनों को ये बताना चाहते हैं कि जो एक हमारी सरकार ने योजना चलाई है राष्ट्रीय दलहन मिशन की, और दाल जैसा कि आपने प्रीति बताया कि इसका केवल आर्थिक और व्यापारिक महत्व नहीं है बल्कि ये हमारे पोषण, हमारे स्वास्थ्य, हमारे सेहत के लिए भी बेहद उपयोगी है, क्योंकि राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार भारतीय आहार में कुल प्रोटीन सेवन में हमारी दालों का योगदान लगभग 20-25% है। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय दलहन मिशन चलाया है।
0: जी, तो ये तो थी जानकारी राष्ट्रीय दलहन मिशन की और अब हम कृषि समाचार दर्शन के तहत बातचीत सुनवा

0: करते हैं, जिसका विषय है विश्व मधुमक्खी दिवस, गर्मियों में मधुमक्खियों का प्रवासन, ये विषय है। और इस पर जो जानकारी दे रहे हैं वो हैं डॉक्टर SM हलधर, जो कि वैज्ञानिक हैं NCIPM नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शशि कपूर। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: किसान बहन भाइयों, राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपसे कहते ही हैं कि भाई आप खेती के साथ साथ अन्य काम भी करिएगा, चाहे आप मछली पालन करें, मधुमक्खी पालन करें, या अपना कोई और स्वरोजगार करें, ताकि जब भी आपको खेती में घाटा हो तो उसकी भरपाई हो जाए और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनी रहे। तो आज के कार्यक्रम में हम खासकर बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन की। और जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी का मौसम है, ऐसे मौसम में जो हमारे किसान बहन भाई हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं खेती के साथ साथ, जो करना भी चाहते हैं, अभी तक नहीं किया है, तो जो कर रहे हैं वो गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों का प्रबंधन कैसे करें, खास करके इसके माइग्रेशन को कैसे रोकें, तो इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रवण M हलधर जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, सभी किसान बहन भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, राम राम जी।
1: डॉक्टर साहब, आज 20 मई है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, कब शुरू हुआ, और हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण ये दिन है?
2: ये इसलिए मनाया जाता है कि ये 2017 के अंदर इसको विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाए। और ये कि आधुनिक एक वैज्ञानिक थे एंटोन जॉन, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मधुमक्खी पालन पे, इसलिए उनके जन्मदिन पे ये स्टार्ट किया गया और ये 20 तारीख को हम मनाते हैं। और ये 2017 में इसका स्टार्ट हुआ। और मधुमक्खी पालन इनका मतलब ये नहीं है कि आपको शहद ही मिलता है, इसके साथ साथ इससे 20-30% तक आपका जो अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं उनका पोलिनेशन भी करता है, एज ए पोलिनेटर का काम करता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे भारत के अंदर, तो हर घर के अंदर एक मधुमक्खी का डिब्बा होता है और सभी इंडियन भी, भारतीय भी को वो रेयर करते हैं।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि विश्व मधुमक्खी दिवस क्यों मनाया जाता है, कितनी इसकी उपयोगिता है, और हमारे किसान बहन भाई हैं जो अब तक खेती कर रहे हैं और उन्होंने सुना भी होगा मधुमक्खी पालन के बारे में, लेकिन वो अब करना चाहते हैं, तो किस तरह से इसकी शुरुआत वो कर सकते हैं, कैसे करें, कहाँ से करें, और कौन कौन सी जो प्रजाति हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी?
2: भारत के अंदर अपन 2 स्पेसीज इतने दिनों तक थी जिसको हम रियर कर सकते थे। एक है एपिस मेलिफेरा, जिसको इटालियन भी बोलते हैं, और अभी भारत के अंदर 80-85% जो शहद आ रहा है वो एपिस मेलिफेरा से आ रहा है। बट एक हमारे भारतीय बी भी है, एपी सेरेना इंडिका, उसकी 3 सब स्पेसीज है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में अगर जाओगे तो उधर एपी सेरेना हिमालयंस मिलेगी, साउथ में जाओगे तो एपी सेरेना इंडिका मिलेगी, और सेंट्रल इंडिया के अंदर एपी सेरेना सेरेना मिलेगी। और दोनों ही प्रकार की जो स्पेसीज है उसको किसान और मधुमक्खी पालक है उसको रियर कर सकते हैं। अब इसके अंदर अंतर क्या है, आपका जो एपिस मेलिफेरा है, इटालियन बी जिसको बोलते हैं, इससे जो एक छत्ता या एक जो बॉक्स होता है उससे आप 30-35 किलो हनी एक साल में और शहद ले सकते हैं। बट इंडियन बी जो है उससे 10-15 किलो आपको शहद मिलता है। बट उसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है, उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट और जो प्रोलिन कंटेंट, ये चीज़ें जो होती है वो अच्छी होती है, बट उसको हर जगह रियर नहीं कर सकते, उसमें स्वार्मिंग और माइग्रेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट इटालियन भी है जिसको इजीली किसान भाई ज़्यादातर जगह कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे उत्पादन ले सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई भी काम करने के लिए ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और जैसा कि आपने बताया कि भाई पेटियों की भी इसमें आवश्यकता होती है, और जो मधुमक्खी उनकी जो अच्छी जो प्रजाति है उनकी आवश्यकता होती है, तो कितनी पेटियों के साथ कोई भी हमारे जो किसान भाई या युवा साथी हैं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, और ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरुआत करने से पहले वो कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं?
2: अगर मधुमक्खी पालन आप करना चाहते हो तो उसकी ट्रेनिंग भारत के अंदर ज्यादातर जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एक एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान विभाग होता है, उनके अंदर ज्यादातर सेंटर है। अगर दिल्ली के आसपास आप देखो तो हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सेंटर है जो 5 दिन की ट्रेनिंग भी देता है, 10 दिन की ट्रेनिंग भी देता है। और उसके अलावा आप दूसरी जगह अगर साउथ में जाओगे तो कर्नाटका के अंदर भी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी है, जहां पे एक क्रीप ऑन हनीबी एंड पोलिनेटर्स का एक सेंटर चलता है और उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप पन्नगर जाओगे उत्तराखंड के अंदर, वहां पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते

0: मिल सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं पात्रता की, कि जो भी हमारे युवा साथी हैं या जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, करना चाहते हैं, तो पात्रता मतलब किस बेस पर उनको ट्रेनिंग में आने का मौका दिया जाता है?
0: इसके अंदर ऐसे कोई पात्रता नहीं है, पर 10वीं और 12वीं होती है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है 5 से 7 दिन और 10 दिन का, उसके बाद में जो नेशनल बी बोर्ड है, ऑनलाइन पोर्टल है, उसके ऊपर जो आपको अनुदान दिया जाएगा, उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार उसको स्टेट गवर्नमेंट को देती है। स्टेट गवर्नमेंट किसानों को अलग अलग एरिया में जो बी कीपर्स है उनको इसके लिए अनुदान दिया जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने अनुदान की बात की, तो हमारे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग लेकर के काम करना चाहते हैं, तो सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका कि ये मधुमक्खी पालक हैं उनका लाभ ले सकते हैं?
0: भारत सरकार ने 2018 के अंदर 500 करोड़ मधुमक्खी के लिए स्पेशल एक पैकेज दिया गया, जिससे कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो शहद पैदा किया जाए। उसी के बेसिस पे नेशनल बी बोर्ड है, NBB जो है दिल्ली के अंदर है, वो अनुदान अलग अलग स्टेट को देती है, स्टेट अनुदान बी कीपर्स को देते हैं। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेगा, उसी के बेसिस पे आपको 100 बॉक्स के, 50 बॉक्स के अलग अलग जो लेना चाहते हैं उसके ऊपर उनका कुछ परसेंट होता है, वो अनुदान उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसकी कॉलोनी दी जाती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग करते हो तो उसके लिए कॉलोनी एक इम्पोर्टेंट होती है और उसको साथ में लेना होता है, तो आपको बॉक्स के साथ आपकी कॉलोनी भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, अब बात करते हैं, जैसे कि शहद तो हमें मिलता ही मिलता है मधुमक्खियों से, इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं?
0: जो आप एपिकल्चर करते हो, मधुमक्खी पालन करते हो, इसे एक शहद एक पार्ट नहीं है, इसके अलावा आपको वैक्स इससे मिलता है, इससे प्रोपोलिस मिलता है, और इसके अलावा जो स्टिंग्स से जो निकलता है वो भी आपको मिलता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट इससे निकलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर जब हनी को, जैसे हनी डेथ पीरियड हम बोलते हैं, जिस टाइम पोलिनेशन नहीं होता है, तो उस टाइम उसके रियर के लिए पोलन्स भी हमारे को कलेक्ट करते हैं। तो जब हनी फ्लो पीरियड होता है उस टाइम बीज कलेक्शन बहुत ज्यादा पोलन का लेके आती है, तो उसको भी आप इकट्ठा करके उससे भी आप मार्केट डेवलप कर सकते हो, और आप उसको मधुमक्खी को भी जब गर्मियों में जब जरूरत पड़ती है उस टाइम आप उनको खिला सकते हो।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब एक बात सुनने में आती है कि जो भी मधुमक्खियों की पेटियां होती हैं, और अक्सर देखते हैं कि जो कुछ किसान भाई हैं कि अपने खेतों के आसपास नहीं रखने देते, कहते हैं कि भाई हमारी जो फसलें हैं वो कमजोर हो जाएंगी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: ये जो किसान भाई अगर कोई खरीदना चाहता है तो ये बहुत ही गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका सरसों का खेत है और सर्दियों के अंदर आपने 20 पेटी, 50 पेटी या 100 बॉक्स आपने रख लिए, तो आपका 20 से 30% आपका यील्ड उसका इंक्रीज हो जाता है। और मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी बी कीपर्स है वो फार्मर्स हैं, उसके लिए उनकी डिमांड होती है फार्मर्स की कि हमारे खेत में रखो, जिससे उसको मिनिमम पैसा भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उससे, क्योंकि ये पोलिनेशन सबसे ज्यादा जो क्रॉस पोलिनेटेड जितनी भी फसलें हैं उसके अंदर जो पोलिनेशन करती है वो एक बी ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा होता है या एपिकल्चर से होता है।
1: तो बिल्कुल ये बात हमारे किसान बहन भाइयों को समझने की है कि जो मधुमक्खियां होती हैं उनसे पॉलिनेशन होता है, पराकरण होता है, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत लाभकारी होता है, जिससे हमारा जो फसल उत्पादन है वो ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब, जो भी हमारे मधुमक्खी पालक हैं मधुमक्खियों को पालन करते चले आ रहे हैं और गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में वो किस तरह से प्रबंधन करें ताकि उनको अच्छा उत्पाद मिले, शहद अच्छा मिले, और साथ ही साथ इस गर्मी के मौसम में माइग्रेशन को कैसे रोकें?
0: मैं इसके अंदर दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि हनी बी है और जो एपिकल्चर है वो दो प्रकार से करते हैं। एक भारतीय बी है जिसको आप एक जगह रह करके, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे एक घर के अंदर, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता नहीं है, तो वो एक जगह ही रह करके उसको पोलन सब्स्टिट्यूट और जो आर्टिफिशियल शहद होता है वो दे करके और शुगर दे करके उसको रियरिंग और एक जगह माइग्रेशन को उसको रोक लेते हैं। बट जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इस एरिया के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 40 से ऊपर चला जाता है, जैसे ही 35 और 37, 38 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो आपकी जो इटालियन बी जो इस एरिया में 80% रेयर करते हैं वो उस पर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या करते हैं किसान भाई, जैसे ही अप्रैल होता है यहाँ से उसको माइग्रेट करके और उत्तराखंड और हाई अल्टीट्यूड जो एरिया है जहाँ पे ठंडा एरिया है, जहाँ पे उसको पोलन मिल सके और आर्टिफिशियल डाइट भी दे सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। अब ये दूसरी बात आती है कि अगर आपको एक ही जगह रखना है और लिमिटेड एरिया में आपको डेवलप करना है, क्योंकि 40 से ऊपर जाएगा तो इसको बहुत मुश्किल होता है, बट अगर फिर भी आपको, जैसे आपको छाया मिल गई, आपको 10-20 बॉक्स घर के लिए, आपको 2 बॉक्स आपको रियर करने हैं, उनको रखने के लिए आपको जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसके अंदर जो बोरी का टाट जो होता है उसके ऊपर डाल दिया जाएगा जैसे दोपहर के टाइम में, जिससे उसको रख सकते हैं। एक जो पेड़ होते हैं या आप ग्रीन नेट या छाया लगा करके उसके नीचे रखा जाए, जिससे कि उनको टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़े। दूसरी आपको जो बी कीपिंग का जो बॉक्स होता है

0: उसको वहीं पे रखना है जहाँ पे पानी की सुविधा हो। दूसरी यह है कि गर्मियाँ होती है उस टाइम आपके पास पोलन फील्ड के अंदर होते नहीं है, तो उस टाइम आपको जैसे शुगर है, आपका हनी है, इनको मिला करके 1:1 रेशियो और अलग अलग टाइप के पोलन सब्सटीट्यूट आजकल मार्केट में भी आते हैं, परागकण को इकट्ठा कर लिया जाता है। जब डेथ पीरियड हम बोलते हैं, जब हनी नहीं निकलता है, जब पोलन होते नहीं है, तो उस टाइम उसको खिलाया जाता है जिससे कि उसका माइग्रेशन बॉक्स छोड़ के दूसरे में नहीं जाए। तो इस टाइप के अपन कई चीज़ें होती है। और जैसे गर्मियाँ होती है इस टाइम माइट की भी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वेरो माइट है वो जो मेजर प्रॉब्लम करती है, जैसे गर्मी बढ़ती है तो उसकी प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और टाइमली उसको देखना। और फॉर्मिक एसिड भी एक आता है, उसको भी मिनिमम आप यूज करके और उसका कंट्रोल कर सकते हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और चलते चलते हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि एक स्लोगन भी है कि अगर मैं दोबारा अगर कहीं रहूंगा या सरवाइव करूंगा तो मैं एक मधुमक्खी जैसे, क्योंकि मधुमक्खी को हम सोशल इंसेक्ट बोलते हैं, जो कि सबको साथ लेके, अपनी कॉलोनी को पूरी को साथ लेके मेंटेन रह करके देती देती है, ज्यादा से ज्यादा उसका कितने प्रोडक्ट है, कितना पोलिनेशन, अगर वो नहीं होगा तो आपके खे आपका जीवन भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपका बीज और पोलिनेटर्स नहीं होंगे तो।
1: बिल्कुल डॉक्टर श्रवण एम हल्दर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए, और आपकी दी गई बातों का वो ज़रूर लाभ लेंगे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी हमारे किसान भाइयों ने सुना विश्व मधुमक्खी दिवस, जो कि आज है 20 मई को, और इस दिवस के उपलक्ष्य में गर्मियों में मधुमक्खियों का प्रवासन कैसे होता है, और इसके बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर एस एम हल्दर, जो कि वैज्ञानिक हैं NCIPM नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे थे शशि कपूर। तो अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं प्रीति।
3: जी बिल्कुल, और क्योंकि शाम का समय है और हमारे जो किसान भाई हैं वो अब सुनना चाहते हैं एक भजन, तो सुनवाते हैं सर्वेंद्र कुमार की आवाज़ में ये भजन।

0: अभी आपने सुना सर्वेंद्र कुमार की आवाज़ में ये भजन।
1: और अब आइए अपने किसान भाइयों का और मनोरंजन करते हैं, एक और भजन सुनवाते हैं सर्वेंद्र कुमार की ही आवाज़ में, और इसके बोल हैं पार लगाओ आके।

0: तो अभी आप सुन रहे थे सर्वेंद्र कुमार की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था श्रवण कुमार से।
1: और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। आइए अब सुनते हैं गजलों के कार्यक्रम को।

0: अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी पुरानी स्ट्रीट लाइट को हटाकर स्मार्ट LED लाइट लगाने का निर्णय लिया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा, दिल्ली में 255 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का निस्तारण किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक सहायक सतर्कता अधिकारी और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ अधिकारी को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को विश्व तीरंदाजी महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल समिति का सदस्य नामित किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान 2026-27 और इसके डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को पहचान देना, उन्हें निखारना और आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
3: मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना की शुरुआत दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से की जा रही है, जिसमें 25,000 से अधिक युवा भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि गायन, नृत्य, रंगमंच, ललित कला, डिजिटल कला, वाद्य संगीत और संगीत संयोजन सहित 7 विधाओं में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 16 से 35 वर्ष तक के युवा बिना किसी शुल्क के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर अपनी वीडियो एंट्री भेज सकेंगे।
4: सरकार युवाओं के गली मोहल्लों तक पहुंचेगी और उन तक अपनी इस प्लान को लेके जाएगी, जिसका नाम हौसलों की उड़ान दिया गया है। एक भी रुपए का खर्च नहीं करना है, ना रजिस्ट्रेशन में ना किसी और चीज में। सरकार अपना पोर्टल लॉन्च करेगी, उसके साथ अपने फोन नंबर देगी। उस पोर्टल पे दिल्ली के 16 साल से लेकर के 35 साल के युवा रजिस्टर करेंगे, अपनी वीडियोस वो शेयर करेंगे। एक ज्यूरीज का पैनल पूरा बैठेगा, वो उनको शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट होने पे पूरी दिल्ली में 35 जोन बनाए जाएंगे।
3: इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली क्रिएटिव कैपिटल और यूथ कैपिटल के रूप में उभर रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि हौसलों की उड़ान युवाओं को अपनी कला और रचनात्मकता को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली सरकार में सभी मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन घर से काम कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मंत्रालय के सभी लोग कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए नागरिकों को प्रेरित कर रहे हैं।
5: वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है, हफ्ते में 2 दिन दिल्ली सरकार में, और उसी का सब लोग पालन कर रहे हैं। ज्यादातर मंत्री और अधिकारीगण वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बाकी दिनों पे भी सार्वजनिक यातायात का उपयोग कर रहे हैं, या EV का उपयोग कर रहे हैं, या सिंगल कार में जा रहे हैं। जो लोग पहले बड़े बड़े सुरक्षा के काफिले के साथ भी चलना पड़ता था, तो एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। मैं भी अपने घर से ही काम कर रहा हूं और ज्यादातर मीटिंग हमारी ऑनलाइन है। बहुत आवश्यकता पड़ रही है तो अधिकारीगणों को यहीं पर ही बुलाकर इलेक्ट्रिक कार से आए, कार पुलिंग करके आए और महत्वपूर्ण फाइलों को घर से ही निपटाया जाए, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
2: श्री मिश्रा ने बताया कि मेट्रो मंडे अभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
6: मेट्रो मंडे में हमने देखा कि जनता की बढ़ चढ़कर भागीदारी थी, इसी कारण मेट्रो को अपने ट्रिप्स भी बढ़ानी पड़ी और डीटीसी को अपनी फीडर सर्विसेज भी बढ़ानी पड़ी और सड़कों पर ट्रैफिक भी कम दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है धीरे धीरे लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII की दिल्ली राज्य परिषद 2026-27 कार्यकाल के लिए आयोजित दूसरी बैठक में शामिल हुए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: बैठक में मंत्री कपिल मिश्रा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार 50% उद्योग भागीदारी के साथ दिल्ली पर्यटन बोर्ड गठित करने की दिशा में कार्य कर रही है। श्री मिश्रा ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत आधुनिक मंडियों के विकास, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के आयोजन तथा कौशल विकास केंद्र स्थापित करने में CII से सहयोग का आग्रह किया। श्री मिश्रा ने यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली में बड़े आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देगी। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी पुरानी स्ट्रीट लाइट हटाकर स्मार्ट LED लाइट लगाने का निर्णय लिया है। लगभग 473 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इसकी मंजूरी दी गई है। ये निर्णय व्यय वित्त समिति की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में लिया गया। इन स्ट्रीट लाइट्स की कुल संख्या लगभग 96,000 है। नई स्मार्ट LED लाइट्स लगाने से दिल्ली में बेहतर रोशनी, ऊर्जा बचत और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित होने की उम्मीद है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजधानी का लैंडफिल रेमिडिएशन मॉडल एक मिसाल बनकर उभरा है। विज्ञान भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे लैंडफिल रिमेडिएशन कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल स्थलों पर अब तक 255 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे का बायो माइनिंग के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है। इससे लगभग 75 एकड़ भूमि दोबारा उपयोग योग्य बनी है। श्री सूद ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 में कचरा प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर लगभग 20,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पुनः प्राप्त भूमि पर 5 नए एकीकृत ताजा अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
2: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सभी 12 जोन के अधिकारी और कचरा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां शामिल हुई। महापौर ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उन्होंने अतिरिक्त संसाधन तथा मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए। श्री वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने हर वार्ड के लिए एक सफाई योजना बनाई है और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अपने संसाधनों और मशीनरी को इस योजना के हिसाब से इस्तेमाल करें ताकि सफाई के स्तर पर सुधार देखा जा सके। महापौर प्रवेश वाही ने आज करोलबाग के राजेंद्र नगर क्षेत्र का निरीक्षण कर सिंधी पार्क में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। महापौर ने पार्क में विकसित किए जा रहे वॉकिंग ट्रैक को आधुनिक, सुरक्षित और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने पर बल दिया। वहीं मंगल बाजार रोड क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए श्री वाही ने दिल्ली जल बोर्ड की खुदाई के बाद सड़क मरम्मत में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के एक सहायक सतर्कता अधिकारी और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। CBI के अनुसार आरोपी सहायक सतर्कता अधिकारी पर एक पूर्व उपनिदेशक से सतर्कता मामले में अनुकूल जवाब भेजने के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। बाद में सौदा 3 लाख रुपए

0: में तय हुआ। ब्यूरो ने बताया कि इस महीने की 18 तारीख को इस मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी एमटीएस कर्मचारी के माध्यम से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। एक रिपोर्ट।
1: इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। ये प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें रील्स, AI आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल है। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। अनुपम की रिपोर्ट साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र मेला भारत टेक्स 2026 का आयोजन इस वर्ष 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने आज आगामी वस्त्र प्रदर्शनी के अनुरूप भारत टेक्स मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री राव ने कहा कि मोबाइल ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खोज के जरिए प्रासंगिक उत्पादों, आपूर्तिकर्ताओं और स्टॉल के स्थानों को तलाशने में विक्रेताओं और प्रदर्शकों के लिए मददगार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोला गया। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मधुमक्खियों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का मूक योद्धा बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि मधुमक्खियां पौधों के परागण, जैव विविधता की सुरक्षा और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि मधुमक्खियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर पड़ सकता है, कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है और खाद्य सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आवासों के लगातार नष्ट होने से मधुमक्खियों का अस्तित्व संकट में है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मधुमक्खियां पर्यावरण संरक्षण, कृषि उत्पादकता और जैव विविधता की महत्वपूर्ण संरक्षक हैं। उन्होंने बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 2017 में शुरू किए गए हनी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक देश भर में 2,46,000 से अधिक मधुमक्खी बक्सों और मधुमक्खी कॉलोनियों का वितरण किया है। राष्ट्रीय राजधानी में 28 मई से 1 जून तक आयोजित होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट और भारत अफ्रीका मंच सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने आज पूर्ण अभ्यास आयोजित किया। इसके अंतर्गत आज दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई। यातायात पुलिस के अनुसार रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग दोनों दिशाओं में आवागमन सामान्य रूप से खुले रहे, वहीं SP मार्ग और मथुरा रोड प्रभावित रहे। भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी का सदस्य नामित किया गया है। श्री सचदेवा वर्ष 2008 से पहले दिल्ली तीरंदाजी संघ और बाद में भारतीय तीरंदाजी संघ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कल दिल्ली में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी पुरानी स्ट्रीट लाइट को हटाकर स्मार्ट एलईडी लाइट लगाने

का निर्णय लिया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा, दिल्ली में 255 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का निस्तारण किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक सहायक सतर्कता अधिकारी और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ कर्मचारी को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने कल दिल्ली में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को राष्ट्रमंडल खेल समिति का सदस्य नामित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थान है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

अब रात का वक्त है तो चंदा तो आ ही जाएगा, अब चंदा आ जाए और चांद दिख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत से गीत हैं और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति शर्मा।

वैसे कवि की कल्पना भी कितनी अच्छी है ना, वो चांद को नीचे बुलाने की बात कर रहे हैं। वैसे आपको बताएं, नीचे बुलाना तो खैर ये कवि की जो कहते हैं ना कि मन में विचार चल रहे थे वो है, लेकिन हाँ वो जब ऊपर भी है तो उसके बारे में कितनी कहानियाँ कितनी कविताएं बन गई हैं। और हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमने भी खुद ऐसी कोशिश की हो कि जब हम रात में खामोश बैठे हों और चांद की तरफ देख रहे हो तो हम चांद में देखते हैं कि कुछ दाग है, कुछ बात है, कि जो चांद की रोशनी चारों तरफ फैल रही है और हमें कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करता है और हम घंटों बैठकर उसे देख सकते हैं और उससे बातें सच में कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी कविताएं हमने सुनी हैं और बहुत सारी कहानियां हमने सुनी हैं, तो चांद है और चांद से तारीफ भी जुड़ी है। और जब हम किसी की तारीफ करते हैं, वाह चांद समखड़ा है ना, चलिए चांद जो है वो बादलों में भी छुपता है, दिखता भी है, पर चांद चांद है ना। और खूबसूरती की अगर बात करें तो भाई हम भी खूबसूरत हैं, आप भी खूबसूरत हैं और खूबसूरत से गीत भी हमारे पास, तो चलिए अब अगला गीत भी हम सुन लेते हैं।

जब बादलों में चांद छिप जाता है ना, तो रोशनी जो है वो चांदनी जो है वो कम हो जाती है, या एक कहो कि गायब सी हो जाती है। लेकिन वो जो हल्का हल्का रोशनी के साथ छिपा हुआ चांद होता है ना, वो बहुत खूबसूरत लगता है ना। चलिए, चांद की बात हो रही है तो चांद जो है ना, वो अब मैं ये कहूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि मन करता है कि जो चांद है ना उसको देखते रहें, उससे बात करें और बस घंटों बस उसे निहारते रहें, है ना। कभी ऐसा होता है ना, तो अगर आपका मन ऐसा कर रहा है तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो जो पल होता है ना वो सुकून का पल भी होता है, क्योंकि हम तब इधर उधर की परेशानियों में ना उलझ कर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, उसे निहार रहे होते हैं, है ना। और वैसे ये शाम का वक्त जो होता है ना, वो होता ही इसलिए कि आप थोड़ा ठहर जाएं, जो दिन भर भाग दौड़ जो आप कर रहे हैं और इधर उधर की बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, तो कुछ वक्त जो है वो आपको मिले कि ताकि आप आराम करें और अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी आराम दें। फिलहाल प्यारे प्यारे गीत हैं, तो गीतों के साथ इस कार्यक्रम को सुनते रहिए आप, तो आपको और मज़ा आता रहेगा।

रात वैसे और सुकून वाली हो जाती है अगर हम काम से थक कर आए और रात से पहले यानी कि थोड़ा शाम को जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं उन्हें अच्छी सी चाय मिल जाए, और जो कुछ चाय के साथ खाना कुछ पसंद करते हैं या कुछ भी हल्का स्नैक्स लेना पसंद करते हैं उन्हें वो मिल जाए अपनी पसंद के, तो फिर शाम तो होती है और रात भी थोड़ा सुकून देने लगती है कि रात में बढ़िया सा खाना मिल जाए। ओहो, और हाँ कि जब घर में सब मिलकर बैठे हों तो कुछ अच्छी बातें भी करें, ये नहीं कि हाँ थकान थकान की बातें या फिर गुस्सा करें, नहीं, कुछ ऐसी बातें करें कि

एक दूसरे की थकान उतर सके और कुछ सुकून मिल सके, है ना। और साथ ही अच्छा संगीत हो तो फिर तो क्या ही बात है। और अगर रात की बात चल रही है और ये वाला गाना ना प्ले हो तो कैसे हो सकता है।

आए तुम आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। वाह क्या बात है, तारीफ में ऐसे शब्द अगर मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। वैसे किसी की तारीफ करना ना कोई गलत बात नहीं होती है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो आपको तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले का दिल भी खुश हो जाता है, और आप जो आपके मन में विचार मर रहे होते हैं ना कि यहाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप जब तारीफ़ कर देते हैं ना तो आपके दिल को और ज़्यादा खुशी मिलती है। और हाँ, लेकिन झूठी तारीफ़ है ना वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झूठी तारीफ़ जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ना एक गलत विचार लाती है। लेकिन हाँ, सच्ची तारीफ़ ना करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि आप खुश होते हैं और आप सामने वाले को छोटी सी खुशी दे पाते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है।

फूलों को पसीना आ गया। और फिलहाल अगर हम बात करें तो गर्मी इतनी है ना कि हमें पसीना आ जाता है, और ऐसे दिल चाहता है कि बस कहीं बाहर ना निकलें और घर पर ही रहें और घर पर भी पानी पीते रहें, है ना। पर गर्मी बहुत है, तो इस गर्मी में अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, अपने पानी पीने का जो एक क्रम है ना उसे बनाए रखिए, पानी पीते रहिएगा। क्योंकि पानी अगर आप कम पिएंगे ना तो फिर बहुत सारी दिक्कतें जो है वो आपके साथ शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी अपना ख्याल जो है ना वो खुद रखना चाहिए, और हाँ ये कोशिश करनी चाहिए कि अब जब हम सभी का ख्याल रख रहे होते हैं तो अपने बारे में हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, है ना। और वैसे ये भी होता है ना कि कई बार ही हम कुछ ज़्यादा ख्याल रख लेते हैं तो किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, हाँ अपना ख्याल रखना चाहिए। और हाँ साथ ही साथ ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा था ना कि तारीफ़ करना जो है ना वो गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ झूठी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। और ये बात सच और झूठ पर भी लागू होती है कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सच बोलें, और सामने वाले को भी ना सच स्वीकारने की एक कहते हैं ना हैबिट होनी चाहिए और आदत होनी चाहिए। क्योंकि सच जो है ना वो तो सच होता है और झूठ झूठ होता है, लेकिन हाँ कभी कभी हमें किसी कारण थोड़ा छोटा मोटा झूठ जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है ना वो अगर हम बोलते हैं तो चल जाता है, लेकिन हाँ सच तो सच होता है। और फिलहाल सच बताओ ना तो बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं, और हम आपसे बातें भी करते रहेंगे लेकिन उन गीतों को भी आपको सुनवाते रहेंगे।

आप छोटा हो या बड़ा भाई, उसे पूरा करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। और आपको बता दें कि ये जो आपने देखा भी होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, ख़ास दोस्त बनते हैं, कुछ जो ये कहें कि उतने ख़ास नहीं बनते हैं जितने कुछ लोग ख़ास बनते हैं। लेकिन हाँ, उसमें आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि कौन आपके लिए आपको कुछ अच्छी राय दे रहा है, कौन आपके लिए आपको अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको अपने सपनों में, सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा है। तो ये ख्याल आप रखते हैं ना, और लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, उन लोगों की, तो खासकर जो आपको एक तरह से डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं और जो कहते हैं ना कि ये तेरे से नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, तो उन लोगों से तो जितना दूर हो सके आपको दूर रहना चाहिए। और फिलहाल अगर वो आपके साथ बने रहते हैं और आपकी मजबूरी होती है, तो एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। और हाँ,

आलोचक जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत भी देते हैं, वो आपको एक तरह से चैलेंज कर रहे होते हैं कि ये आपसे नहीं हो सकता और आप ये नहीं कर सकते, तो आपको ना वो एक चैलेंज की तरह उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये काम बहुत अच्छा है और इस काम से मुझे सुकून मिलेगा या मेरी तरक्की होगी, तो मुझे उसके लिए ना पूरी की पूरी कोशिश करनी है और अपना जो ख्वाब है वो पूरा करना है, अपनी जो मंजिल है उसे पाना है। तो ये कोशिश आप करते रहिए और जीवन में हंसते मुस्कुराते रहिए। और एक हाँ जो मैं कहती हूँ हमेशा, कि छोटी सी कोशिश कीजिए कि आप अपने अपनों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला सके, उन्हें भी छोटी सी खुशी दे सके। तो फिलहाल एक और गीत जो कर रहा है हमारा इंतज़ार, उसे भी सुन लेते हैं।

इसी खूबसूरत से गीत के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करेंगे, लेकिन आप कहीं जाइए नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी और उर्दू में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट

0: प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4

0: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामे शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी। इन माहिदों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दो तरफा ताल्लुकात की खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने की निशानदही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौरवखौज किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दो तरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बाहमी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती

0: सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन, मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between PM Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, PM Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Later in the day, PM Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization, FAO, at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Q. Dongyu. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has announced immediate initiation of beg your pardon, immediate initiation of deportation

आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है गीत। गीत सुहाने कार्यक्रम। और लीजिए कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

भोसले की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म साहब बीबी और गुलाम से। और लीजिए अब आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म सच्चाई का ये गीत।

का साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

0: इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम गीत सुनहरे यही संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, मछली पालकों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि

0: और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए उचित कानूनी ढांचे का अध्ययन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरानी जहाज पर नाकेबंदी शुरू किए जाने के बाद ये लगभग 5वां पोत है जिस पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. India and Italy have finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between PM Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome yesterday. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, PM Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Later in the day, PM Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agricultural Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Q. Dongyu. Union Home Minister Amit Shah has congratulated PM Modi for being honored with Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Shah said, "This honor is a tribute to millions of Indian farmers and all those associated with the agricultural sector." Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal and Union Finance Minister Nirmala Sitharaman have congratulated PM Modi over the conferment of FAO's honor. West Bengal Chief Minister Shobhendu Adhikari has announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nabarna yesterday during a land handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. Mr. Adhikari clarified that no action would be taken against members of the seven communities protected under the CAA, provided they had entered India before 31st of December 2024. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle briefing reporters on the media update to the World Economic Situation and Prospects report said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has said that nuclear energy will become indispensable for ensuring a carbon-free industrial-scale baseload power supply and that the state is fully prepared to lead the sector's transformation. Addressing a delegation from the Nuclear Energy Institute and the U.S.-India Strategic Partnership Forum during the U.S. Nuclear Executive Mission to India, he said long-term industrial growth cannot rely solely on solar and wind energy. Mr. Fadnavis noted that emerging sectors such as artificial intelligence, data centers, semiconductors, green hydrogen, electric mobility, and the wider digital economy will require stable and continuous power, making nuclear energy an economic necessity. He also highlighted that Maharashtra's economy, valued at around $660 billion, is supported by strong industrial infrastructure, world-class ports, advanced logistics, a skilled workforce, and industry-friendly policies. India Meteorological Department has issued a red alert for severe heat wave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till today. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at the Eden Gardens in Kolkata. Today, Gujarat Titans will face Chennai Super Kings in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गीत बहार।

0: ये क्या शेखर, वो दोनों तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जलाने का मौका ही नहीं मिला।
1: आज के लिए इतना काफी है संजना, आगे आगे देखो होता है क्या।

0: What the hell are you doing?
1: बहुत प्यार आ रहा है तुम पर.
0: But लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
1: Who cares? जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो और जो जल रहे हैं उन्हें जलने दो.
0: Okay.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास केंद्र पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला लिया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर

0: आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग के संचालन के लिए 5 सदस्यीय पैनल को मंजूरी दी है। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की। इस जहाज पर अमरीकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई और उसका मार्ग बदल दिया गया। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति, कार्यक्रम गीत व गजलों का लेकर हाजिर हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इस गजल से, जिसमें आप सुनेंगे राधिका चोपड़ा का स्वर।

आपकी और हमारी दोस्ती तो बरकरार है, और गजलों के थ्रू, गीतों के जरिए हम आपके साथ हैं। अगली गजल पेश है जगजीत सिंह व चित्रा सिंह की आवाज़ों में।

बारिशें भले ही आज भी होती हैं और आने वाले समय में होती रहेंगी, लेकिन वो कश्ती हम फिर नहीं बना पाएंगे, वो बचपन हम फिर नहीं ला पाएंगे। आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में ये खूबसूरत व बेहतरीन गज़ल। अब चलिए अगली आवाज़ की ओर रुख करते हैं और सुनते हैं हरिहरन को।

0: इसी आवाज के साथ गीत व गजल का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। सुबह के 4 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार तिबांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभूनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है।

0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमेरिका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाज़ों पर नाकाबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाज़ों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाज़ों को रोका गया है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। सुबह के 4:05 हुए हैं।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। यह आकाशवाणी दिल्ली का AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब समय है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सीरगाजी एस गोविंदराजन का गायन, राग ललित में, वायलिन पर संगत की है थिरुपक्कर कदल एस वीरा रागरावन ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई 2026। सुबह के 4:58 हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन समझौतों पर रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया है। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये सम्मान देश के करोड़ों किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को समर्पित है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज पुनः मतदान होगा। दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोल्ला को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार MT सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी लागू की थी। अमरीका का कहना है कि इस नाकाबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.6 MHz अर्थात 819 KHz, DRM 810 KHz पर। सुबह के 5:10 हुए हैं।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे पवन मुक्त आसन और सर्पिंड आसन के बारे में।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़े, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।